सुप्रभात। मीडिया वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तद अनुसार 6 जुलाई 2026। सुबह के 5:54 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

0: इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में मातृभूमि वंदना से। रचनाकार हैं राम प्यारे रसिक।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये आरती।

0: का विषय है माया। संकलन एवं वाचन स्वर हैं अक्षय रंजन वर्मा के।
1: मानव जीवन के रहस्यों को यदि किसी एक शब्द में समेटना हो तो माया सबसे उपयुक्त प्रतीत होती है। यह एक ऐसा विचार है जो जितना सरल दिखता है उतना ही गहन और जटिल है। भारतीय दर्शन में माया को उस शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो इस संसार को वास्तविक प्रतीत कराती है, जबकि इसका मूल स्वरूप अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। यही वह आवरण है जो सत्य को ढक देता है और मनुष्य को भ्रम में रखता है। माया केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और अहंकार में भी विद्यमान होती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, संबंध या स्थिति को अस्थायी मानने लगता है तब वह माया के प्रभाव में होता है। धन, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान, ये सभी जीवन के आवश्यक अंग हो सकते हैं, लेकिन जब इन्हें ही अंतिम सत्य मान लिया जाता है तब यही माया बन जाती है। यह धीरे धीरे मनुष्य को अपनी पकड़ में ले लेती है और उसे वास्तविकता से दूर कर देती है। आधुनिक युग में माया का स्वरूप और भी जटिल हो गया है। आज का मनुष्य आभासी दुनिया में अधिक जी रहा है, जहां वास्तविकता से अधिक महत्व दिखावे को दिया जाता है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली खुशियां, सफलता की चमकदार तस्वीरें और जीवन की सजाई हुई झलकियां, ये सब माया के आधुनिक रूप हैं। इन्हें देखकर व्यक्ति अपने जीवन की तुलना करने लगता है और स्वयं को अधूरा महसूस करता है, जबकि वह जो देख रहा होता है वह केवल एक आभास होता है, पूर्ण सत्य नहीं। वेदांत दर्शन के अनुसार माया वह शक्ति है जो ब्रह्म को संसार के रूप में प्रकट करती है। यह न पूरी तरह सत्य है और न पूरी तरह असत्य, बल्कि मिथ्या है। अर्थात ऐसा अस्तित्व जो प्रतीत तो होता है लेकिन जिसका अपना स्थायी स्वरूप नहीं होता। जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तुएं जागने पर वास्तविक नहीं रहती, वैसे ही संसार भी समय के साथ बदलता रहता है। यह परिवर्तनशीलता ही माया की पहचान है। माया का सबसे गहरा प्रभाव मनुष्य के अहंकार पर पड़ता है। मैं और मेरा का भाव व्यक्ति को सीमित कर देता है। वह अपनी पहचान को अपने पद, संपत्ति या संबंधों से जोड़ने लगता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यही अहंकार उसे दूसरों से अलग करता है और उसे असंतोष, चिंता और दुख की ओर ले जाता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो यही माया पीड़ा का कारण बनती है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या माया से मुक्ति संभव है? इसका उत्तर सरल नहीं है, लेकिन मार्ग अवश्य है। माया से भागना समाधान नहीं है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। इसे समझना और इसके प्रभाव से ऊपर उठना ही वास्तविक साधना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थाई हैं, तब वह उनसे जुड़ा रहता है लेकिन उनमें बंधता नहीं है। यही संतुलन जीवन को सहज बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माया को समझना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। ध्यान, आत्मचिंतन और सदाचार के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर झांकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। वह समझता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में निहित है। यह समझ धीरे धीरे उसे माया के प्रभाव से मुक्त करने लगती है। माया को समझने का अर्थ यह नहीं कि जीवन का त्याग कर दिया जाए, इसका अर्थ यह है कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखा जाए। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि हर सुख और दुख अस्थाई है, तब वह जीवन को अधिक संतुलन, धैर्य और स्वीकार्यता के साथ जी पाता है।
0: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे आज का आलेख माया। संकलन एवं वाचन स्वर थे अक्षय रंजन वर्मा के। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाश

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन का कार्यक्रम विचार बिंदु। कार्यक्रम में आज

आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर हैं श्रीकांत पारगांवकर के। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

0: श्रीकांत पारगांवकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। समय हो रहा है कृषि परामर्श के कार्यक्रम खेती की बात का। सुनते हैं खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है SRI पद्धति से धान रोपण विधि।
1: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में धान की खेती प्रमुख रूप से होती है। धान की परंपरागत खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। धान के खेत में पानी 2-3 इंच तक भरकर रखना पड़ता है, जिसके लिए भरपूर पानी चाहिए। यहाँ धान का औसत उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि काफ़ी कम है। पानी की बढ़ती मांग तथा भविष्य में पानी की कमी को देखते हुए धान की खेती की एक नई विधि विकसित की गई है, जो कि काफ़ी उपयोगी है। इस विधि में कम बीज व कम पानी से अधिक उत्पादन होता है। यह विधि है सिस्टम ऑफ राइस इंटेनिफिकेशन, मतलब SRI विधि। धान अधिक पानी में पनपने वाला पौधा है और अच्छी फसल के लिए खेत में पानी भरकर रखने की आवश्यकता होती है। परंपरागत विधि में पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में हवा नहीं मिलती है, इसीलिए अधिकांश जड़ें बालियों के निकलने तक कमजोर हो जाती हैं, जिससे कभी कभी फसल हवा से गिर जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत में पानी भरकर रखने की आवश्यकता होती है। परंपरागत विधि में पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में हवा नहीं मिलती है, इसलिए अधिकांश जड़ें बालियों के निकलने तक कमजोर हो जाती हैं, जिससे कभी कभी फसल हवा से गिर जाती हैं और उत्पादन में कमी हो जाती है। SRI विधि से खेत में पानी नहीं रहने पर मिट्टी में वायु का संचार होने से पौधों की जड़ों की बढ़ोतरी अधिक अच्छी होती है। इससे संपूर्ण पौधे स्वस्थ रहते हैं और इनका अच्छा विकास होता है, जिसका धान के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस नई पद्धति से धान के एक पौधे में कम 20 से 25 बालियां आसानी से आ जाती हैं। पौधों में 50 व उससे भी अधिक बालियां निकलती है। इन मुख्य विशेषताओं के कारण इस पद्धति से धान की खेती करने से उपज बढ़ती है, जिससे किसानों के लाभ में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, SRI विधि से धान की ज्यादा पैदावार होती है। प्रति पौधा कल्लों की ज्यादा संख्या, बालियों की लंबाई ज्यादा, दाने वाले बालियों की संख्या ज्यादा, बालियों में दानों की संख्या ज्यादा और दानों का वजन ज्यादा होता है। इस विधि में पौधशाला में बीज से बीज की अधिक दूरी पर बोया जाता है, जिससे बीज की खपत कम होती है। SRI विधि में खेत में पानी भरकर नहीं रखते, खेत कभी सूखा व कभी नम रखना पड़ता है, इसलिए पानी की कम आवश्यकता होती है। 8 से 12 दिन के पौधे का रोपण कम गहराई पर किया जाता है, जिससे पौधों में जड़ें व नए कल्ले अधिक संख्या में एवं कम समय में निकलते हैं और पैदावार अधिक होती है। पौध से पौध की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होने से सूर्य का प्रकाश प्रत्येक पौधे तक आसानी से पहुंचता है, जिससे पौधे में पानी, स्थान एवं पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। पौधे की जड़ें ठीक ढंग से फैलती है और पौधों को ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ एवं अधिक उत्पादन होता है। वीडर की मदद से निंदाई करने पर खरपतवार खाद में बदल जाती है एवं पौधे के लिए पोषण का काम करती है। इस प्रक्रिया में पौधों की जड़ों में हवा का आवागमन ज्यादा होता है, जिससे जड़ें तेजी से फैलती है। जैविक खाद के प्रयोग से भूमि में हवा का आवागमन एवं सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जो कार्बनिक पदार्थ की पोषण में बदलने में मदद करते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छा होता है। SRI विधि में पौधों का रोपण अधिक दूरी पर करने से सूर्य का प्रकाश व हवा उचित मात्रा में मिलती है, जिससे रोग व कीटों का प्रकोप कम होता है। यदि रोग व कीटों का प्रकोप होता है तो जैविक पद्धति द्वारा उसका निदान किया जाता है। इस विधि के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके लिए उपयुक्त पीएच मान

0: 5.5 से 7.5 तक है। खेत को पूर्ण रूप से समतल किया जाना जरूरी है ताकि पूरी खेत में एक समान सिंचाई दी जा सके और कहीं भी अनावश्यक पानी न जमा हो। यदि खेत में कहीं ज्यादा पानी जमा होगा तो रोपे गए पौधे छोटे होने के कारण उनके मरने की संभावना बढ़ जाएगी और जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा, जिससे प्रति पौधा कलों की संख्या कम हो जाएगी। इस विधि में जैविक तरीके से खेती करने पर जोर दिया जाता है, जिसमें भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु कंपोस्ट की खाद व हरी खाद के उपयोग करने पर ज्यादा जोर देते हैं। इस तरह किसान भाइयों SRI पद्धति द्वारा धान रोपण विधि करके फसल उत्पादन कर सकते हैं।
1: मीडियम वेब और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:51 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे छत्तीसगढ़ी सादरी और कुछ भोजपुरी लोकगीत। सुबह 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग होगा अंजनी कुमार पांडे का। प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रमेंद्र कुमार। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। प्रस्तुति सहयोग होगा तरुण कुमार चैनानी का। प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रमेंद्र कुमार।

0: सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 12 आप सुन सकेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। सामयिक चर्चा का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण। नियमित सैर व्यायाम रखें स्वस्थ। साथ ही कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोकगीत भेंटवार्ता कार्यक्रम। ईमेल की गूंज हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:40 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ सादरी और सरगुजिया लोकगीत। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। रात 8 आप सुन सकेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। ये थी जानकारी आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रा

अभी आपने प्रभुनाथ वैष्णव और साथियों के स्वरों में छत्तीसगढ़ी में गणेश वंदना सुना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं रामेश्वर लकड़ा और साथियों के स्वरों में सादरी जलसा गीत।

कार्यक्रम गूंजे जंगल के अंत में आइए सुनते हैं हीराचंद पटेल और साथियों के स्वरों में भोजपुरी शिव भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल से।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सईद राई का कलाम भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाजों में।

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के गाए इसी गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: संपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

नमस्कार सरगुजा, कार्यक्रम के आज के अंक में स्थानीय समाचारों के साथ मैं हूं गोपेश। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके

हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म मधुमती का गीत। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बलरामपुर जिले से। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा की तिथि 8 जुलाई एवं 9 जुलाई से। जिले के 22 विद्यालयों में होगी परीक्षा। परीक्षा के सफल संचालन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त। कार्यक्रम में कुछ और भी खबरें होंगी, उससे पहले आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राजकुमार का गीत।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खर खर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।

0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
2: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
3: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
4: नमस्कार सरगुजा, खबर अंबिकापुर से। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन नई दिल्ली एवं लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु शिक्षकों से प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरगुजा जिले से जो शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु अपना नाम पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन 15 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ और भी स्थानीय खबरों के लिए। सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म नागिन का गीत।

भी आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। सुनते हैं खबर अंबिकापुर से। कलेक्टर ने गुरुवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ अंबिकापुर के केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बालिका छात्रावास भवन का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली एवं कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 15 अगस्त से छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जाना है। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन में आवश्यक मरम्मत सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को भी निर्देश दिए कि छात्रावास संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार कर भेजें। जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचकर शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का लिया जायजा, खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार करने दिए निर्देश। निरीक्षण के क्रम में कलेक्टर अंबिकापुर ने खलिबा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचकर यहां उपलब्ध शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ और भी स्थानीय समाचार। उससे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म संगम का गीत।

नमस्कार सरगुजा, खबर अंबिकापुर से। प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर में कोचिंग फैकल्टी हेतु आमंत्रित प्रस्ताव के प्रारूप में आंशिक संशोधन। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अंतर्गत संचालित प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययन सह कोचिंग कार्य हेतु फैकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था, जिसमें वित्तीय प्रस्ताव भाग 3FB1 तृतीय लिफाफा हेतु निर्धारित फॉर्मेट में आंशिक संशोधन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जिले के वेबसाइट www.sarguja.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म आर पार का गीत।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा की आखिरी खबर कोरिया जिले से। विधानसभा मानसून सत्र के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध। आगामी विधानसभा मानसून सत्र 2026 के सुचारू संचालन एवं विधानसभा प्रश्नों के समयबद्ध निराकरण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अवकाश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार विधानसभा मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक संचालित रहेगा। इस अवधि में किसी भी शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी को नियमित अवकाश स्वीकृत किया नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यालय छोड़ने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेशानुसार अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही संबंधित अधिकारी को कलेक्टर की पूर्व अनुमति प्राप्त पश्चात अवकाश प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग प्रमुख को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय सीमा में तैयार कर प्रेषित करने के लिए अपने अपने विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा फैक्स एवं ईमेल के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का त्वरित संकलन एवं प्रेषण सुनिश्चित करें। साथ ही की गई कार्रवाई की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आखिरी गीत फिल्म CID से। स्वर हैं शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के।

0: इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
0: यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं। समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र

0: की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने

0: क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद

0: स्तर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President

स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग और विविधता के विविध रंगों से सजी परिक्रमा की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी। आज के अंक में रामगढ़ पर्वत की वादियों में संपन्न हुआ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, बारिश के साथ गांवों में कृषि कर्म ने पकड़ा जोर, उत्साह के साथ किसान पहुंच रहे हैं खेतों में, नाट्य कर्म और चुनौतियां इस विषय पर इप्टा की संपन्न हुई कार्यशाला, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हुए अनेक आयोजन, चुनौतियों से भरा है चिकित्सकों का पेशा, श्रोताओं आषाढ़ मास के प्रथम दिवस

0: दिवस पर सरगुजा अंचल की गौरवशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के प्रतीक दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने किया। पारंपरिक गरिमा, सांस्कृतिक उल्लास और ऐतिहासिक चेतना से ओतप्रोत इस आयोजन में लोक संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व और पर्यटन का अद्भुत समागम देखने को मिला। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। वहीं नई दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भव्य रामलीला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर सांसद श्री चिंतामणि महाराज, लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, जिला एवं जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित रहे। अषाढ़स्य प्रथम दिवस पर आयोजित होने वाले दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का समापन समारोह दूसरा दिन होता है। इस अवसर पर महाकवि कालिदास की अमर कृति मेघदूतम की स्मृतियां, जोगीमारा गुफाओं और स्थानीय लोक संस्कृति का भव्य उत्सव मनाया जाता है। दूसरे दिन के मुख्य अतिथि रहे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। प्रस्तुत है कार्यक्रम का संपादित अंश।
1: वास्तव में आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है और शायद इस साल पहली बार इस समारोह का इतना भव्य आयोजन हो रहा है और इसके लिए किसी को श्रेय जाता है तो आपके विधायक जी को, हमारे मंत्री जी को जाता है। इनके प्रयास से ये महोत्सव इतना भव्यता लिए हुए है।
2: सीता बेंगरा को विश्व की अत्यंत प्राचीन नाट्यशालाओं में गिना जाता है और इसके समीप स्थित जोगी मारा गुफा प्राचीन भारतीय कला, साहित्य और सांस्कृतिक वैभव का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती है। इसी गौरवशाली परंपरा से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि संस्कृत साहित्य के अमर महाकवि कालिदास जी ने विश्व की अत्यंत प्राचीन नाट्यशालाओं में सुमार सीता बेंगरा के समीप स्थित जोगी मारा गुफा में बैठकर अपने अमर महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी। रामगढ़ की अनुपम प्राकृतिक छटा, यहाँ के मेघ, पर्वत, वन और शांत वातावरण आज भी उस साहित्यिक चेतना का अनुभव कराते हैं। यह मान्यता रामगढ़ को केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि साहित्य, कला और सृजन की पुण्य भूमि के रूप में भी स्थापित करती है।
0: इस साल गर्मी ने हमें बहुत सताया और बारिश ने भी थोड़ी देर से हमारी सुध ली। अभी भी बादलों को जिस तरह से हम लोगों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना था उसमें थोड़ी कमी जरूर रह गई है, लेकिन किसान तो कभी रुकता नहीं है, जीवन कभी ठहरता नहीं है, उसकी अपनी गति होती है। इस साल भी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, किसान अपने खेतों में अपने हल बैल के साथ पहुंच गया है। एक बार फिर बरसाती सीजन की खेती शुरू हो गई है। किसान कहते हैं,
3: जैसे ही बारिश शुरुआत हुई है तब से गांव के जो किसान भाई हैं वो सभी अपने खेतों की तरफ जो है ना ध्यान देने लगे हैं। अभी तो रोपा उपा मतलब चालू हो गया है।
4: तो रोपा लगाने के लिए तो पहले तो थरहा करना होता होगा, तो वो आप लोग पहले ही कर लिए थे क्या?
3: हाँ, जिसके पास ट्यूबवेल का जो साधन है ना वो लोग 15 जून से पहले या 15 जून तक कर लिए रहते हैं थरहा, है ना, और 21 दिन के अंदर अंदर उसको लगाना रहता है और मतलब लगाना बहुत किसान भाई चालू भी कर दिए हैं। मतलब जिनके पास साधन है ट्यूबवेल का या नदी किनारे जिनका खेत है ना वो किसान भाई जो है रोपाई कर रहे हैं। अभी
4: माहौल बड़ा बदल जाता है, सब लोग अचानक व्यस्त हो जाते हैं।
3: हाँ हाँ,
4: तो अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं?
3: अभी क्या है, मैं तो फिलहाल टमाटर की तैयारी कर रहा हूँ, टमाटर अच्छा, लगाने की। जी
4: अच्छा अच्छा, तो हाँ, आपके हाँ, गांव की तरफ टमाटर भी लगता है और धान की भी खेती होती है?
3: हाँ, धान भी मतलब धान की खेती और टमाटर ये सब होता है, सब्जी की भी खेती होती है। इसमें क्या है, बहुत किसान भाई जो टमाटर का जो थरहा करते हैं उसका पौधा तैयार करते हैं वो मतलब जैसे टमाटर का थरहा कर चुके हैं, है ना, और उसका पौधा धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तब तक वो किसान भाई अपना मतलब धान रुपाई कर रहे हैं। अभी धान रुपाई खत्म करेंगे, इसके बाद अपना टमाटर में लग जाएंगे।
4: मतलब टमाटर की खेती, मतलब कि

0: बहुत अधिक व्यस्तता है?
1: बहुत बहुत ज्यादा व्यस्तता है, अभी व्यस्त हैं सभी किसान भाई।
0: सुग्रीव जी, चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी खेती अच्छी हो, आपका लाभ अच्छा हो, पूरे गांव में जो किसान हैं उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पिछले दिनों भारतीय जननाट्य संघ इप्टा ने एक विचार गोष्ठी आयोजित की, जिसका विषय था नाट्य कर्म और चुनौतियां। नाटकों के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश आ रही हैं? धन, स्थान और रुझान, ये तीनों ऐसे संसाधन हैं जिनकी नाटकों को जरूरत होती है। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री विजय गुप्त ने हमें बताया।
3: हिंदी रंगमंच के साथ बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो क्या होता है कि जो रंगकर्मी है, आप उससे मतलब अपनी कला से वो अपना पेट नहीं भर सकता है। वो समय गया, बंगला थिएटर था, मलयालम का थिएटर था, जहां पर लोग अपने रंग कर्मियों को बहुत प्रेम करते थे और उनकी देखभाल भी करते थे। लेकिन आज स्थिति हिंदी रंगमंच की ऐसी नहीं है। तो बदकिस्मती है कि खाने के लिए तो आदमी को दूसरा काम करना पड़ रहा है ना। इसके बाद भी अगर वो जो भी थोड़ा बहुत समय बचता है, ऊर्जा बचती है, तो वो अगर रंगमंच को लगा रहा है तो प्रशंसनीय। बड़े शहरों में मान लेते हैं कि ऑडिटोरियम है, रंगमंच है, लेकिन छोटे शहरों में, कस्बों में कोई भी रंगमंच का भवन नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप निशुल्क जाकर प्रदर्शन कर सके। तो ये चीजें तो बताती हैं कि हम अपने प्राचीनतम अभिव्यक्ति की पद्धति को मतलब ठीक ढंग से बरत नहीं सके हैं। कलाकारों के साथ मिलकर जो कला क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न प्रवृत्ति के लोग हैं, विभिन्न कलाओं से जुड़े लोग हैं, तो उनके सामने देखी चुनौती पहले भी थी और अभी भी है। आपको मैं बताऊं कि छोटे कस्बों में टिकट बेचने की समस्या आती है। भाई आप कैसा भी नाटक कर लें, उसमें खर्च तो होगा ना। कॉस्ट्यूम है, और भी सामान है, पर्दे हैं, मंच है, और फिर मंच तो आपको फ्री नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये देखिए, ये तो रहेगा। खासकर हिंदी रंगमंच के सामने ये संकट पहले भी बहुत गहरा था, अभी भी है। तो इस प्रकार की चीजों से तो लड़ना पड़ेगा। अपनी बात को कहने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा।
0: विजय जी, इस दौर में जबकि आप ये देखेंगे कि एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक अपने हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि युवा जो है वो नाटकों से छिटक करके और मोबाइल में, चूंकि फिल्म बनाना बहुत आसान है इसलिए वे छोटे छोटे रील बना रहे हैं, वे छोटे छोटे छोटी छोटी लघु फिल्में बना रहे हैं, उसका कंटेंट चाहे जैसा हो आमतौर पर लोग उसे देख रहे हैं और उसमें मनोरंजन तलाश रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं रंगमंच?
3: नहीं, चुनौती तो ये बहुत बड़ी है। दरअसल जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, उसने हमारी कल्पना शक्ति को तो बहुत हद तक बर्बाद किया है। आप ये देखिए कि मोबाइल पर जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे आप एक छोटी सी रील बना देते हैं, ये छोटा सा कोई कहीं पे कोई शूट करके कहीं भी कोई भी दिखा देते हैं। अब आप जैसे मुझे बताइए कि अगर ऐसा हुआ है, लोगों को मैंने देखा है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और वो मर रहा है, वो आदमी बहुत बुरी तरह घायल है, और लोग उसको अस्पताल पहुंचाने की जगह उसका वीडियो बना रहे हैं। तो क्या संस्कृति आपको क्रूरता सिखाती है? आपकी संवेदना को मारती है? ऐसा नहीं करती है संस्कृति। ये चीजें हो रही है। मोबाइल ने आपको आपकी कल्पना शक्ति से, आपको अध्ययन करने से बहुत बहुत दूर कर दिया है।
0: आपने हमें समय दिया और बहुत ही बारीकी के साथ रंगमंच के सामने जो चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर अपना विचार साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को समर्पित है। प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और डॉक्टरों को सम्मान देने के उद्देश्य से ही यह दिवस मनाया जाता है।

0: डॉक्टरी का पेशा समाज में सबसे सम्मानित कार्यों में से एक है, लेकिन इसके साथ ही इस पेशे में सबसे अधिक चुनौतियां भी हैं। लोगों की आस्था, भरोसा, विश्वास, सबकी सुरक्षा करने की चुनौती डॉक्टरों के सामने होती है। मरीजों के परिजन तो भगवान के बाद चिकित्सकों पर ही सबसे अधिक विश्वास करते हैं, लेकिन इस भरोसे को निभा पाना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी कहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की बधाइयां, लेकिन इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूंगा कि इस चिकित्सकीय पेशे में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसा है ये चिकित्सकीय पेशा, आपके क्या अनुभव है?
2: नमस्ते, धन्यवाद। चिकित्सकीय पेशा काफी गंभीर क्षेत्र है। इसमें हमें दूसरों के दिक्कत, परेशानी, जो भी उनकी समस्या है, उनकी भाषा में उस चीजों को सरल शब्दों में समझना, उसको जान पाना, उनको अच्छे से सही शब्दों में समझा पाना।
1: कभी कभी लोग बहुत हड़बड़ी में आते हैं डॉक्टर साहब, और उन्हें लगता है कि डॉक्टर मिल गए और सारी परेशानी दूर हो जाएगी, जबकि बात कुछ और रहती है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना आप लोग कैसे करते हैं?
2: अब ऐसी परिस्थितियों में हम तो सबसे पहले उनको मरीज की जो गंभीर अवस्था है उससे अवगत कराने की कोशिश किया जाता है कि किसी तरह सरल शब्दों में उनको ये बात समझाया जा सके कि मरीज को, जिस देरी से वो मरीज को लाए हैं, उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है।
1: मरीज के साथ डॉक्टरों के कैसे संबंध होते हैं डॉक्टर साहब?
2: मरीज और डॉक्टर का संबंध बहुत सही रहता है। जितना मरीज अपने बारे में सही जानकारी देगा, उतना सही इलाज हो पाएगा उसका। हर तरह का संबंध होता है, एक छोटे भाई से जैसा संबंध है वैसा संबंध होना चाहिए,
1: क्योंकि परिजन भी ये इसी निश्चिंतता और विश्वास के साथ डॉक्टरों को अपने परिजन सौंप देते हैं।
2: जी जी।
1: डॉक्टर साहब, चुनौतियां कैसी हैं? कब डर लगता है डॉक्टरों को?
2: डर तब लगता है जब ऐसे कभी भी अचानक से कोई मरीज गंभीर होता है और उसके साथ कई सारे लोग आ जाते हैं। कोई ये नहीं समझता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम उसकी बीमारी को इग्नोर किए हैं, ध्यान नहीं दिए हैं, बस तुरंत लेके आते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो तुरंत ठीक हो जाएगा। मतलब कई केसों में तो होता है कि हाँ, बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं तो डॉक्टर भगवान है, लेकिन वही जब नहीं बच पाते हैं तो अब हाथापाई पे उतर आते हैं, जैसे काफी केसेस आपने पिछले बीते एक दो सालों में सुना होगा।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अप्रिय स्थिति होती है। इन सब घटनाओं का तो डॉक्टरों के आम जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता होगा।
2: देखिए, डर तो लगता है, लेकिन अब क्या करेंगे, जिसका प्रोफेशन ही वैसा है तो एक आदत सी भी बनी हुई है, और आजकल लोग भी समझदार हो गए हैं। वो जैसे गूगल की हेल्प से और ये सबसे हर चीज के बारे में जानते हैं, और कोई भी आजकल एक डॉक्टर के भरोसे नहीं रहते हैं, सब डबल ओपिनियन लेते हैं।
1: तो ये अच्छा तो है कि मतलब लोगों को पहले से पता होता है कि स्थिति क्या है।
2: हाँ, कहीं ना कहीं उनको भी अंदेशा रहता है।
1: आज विज्ञान और डॉक्टरी का पेशा कहाँ तक पहुँच चुका है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अब विज्ञान ने तो बहुत तरक्की कर ली है गत दिनों में। हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें आ गई हैं। हमारे अपने क्षेत्र में कई सारी आधुनिक सर्जरी और या सर्जरी आ गई हैं। रोबोटिक सर्जरी हो रही है भारत में
1: जी,
2: तो काफी आगे जा चुका है।
1: कोरोना के क्षेत्र में, कोरोना के समय में डॉक्टरों ने ही इस दुनिया को बचाया, क्या कहते हैं आप?
2: डॉक्टरों से ज्यादा सबसे योगदान एक दूसरे का था, जो एक दूसरे से दूरी बनाने का था, अब समय पे वैक्सीनेशन लगवाने का था, वो लोगों ने किया, जिसकी वजह से हम कोरोना से लड़ सके, तो एक मिलजुल के ये किया गया था।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की डॉक्टर्स डे की, एक बार और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। और अब लीजिए पेश है ज्ञान और मनोरंजन के विविध रंगों से सजी विविधा।

0: विविधा की आज की प्रस्तुति में है
1: सरगुजा संस्कृति के आईने में। सरगुजा संस्कृति के आईने में श्रोताओं लीजिए सुनिए पवित्र सांस्कृतिक स्थल टांगीनाथ के विविध पौराणिक संदर्भ। इन संदर्भों को हमने जनश्रुतियों से एकत्र किया है।

0: प्राचीन काल में सरगुजा अंचल दुरूह और भयावह तो था ही, अविद्या के अंधकार से भी ग्रस्त रहा, किंतु पीढ़ियों से चला आ रहा अनुभव का ज्ञान अपार विद्या के रूप में उसने जरूर हासिल किया था। ये ज्ञान अक्षरी ज्ञान भले न हो, किंतु शंका, भय, अकाल, शत्रु संकट और दैवी प्रकोप से बचने या हौसला देने वाला जरूर था।
1: यह विद्या लोकोक्ति या कहावतों से अर्जित किया गया ज्ञान, जो पुरखों की थाती के रूप में प्रामाणिक तो माना ही गया, इसे फैलाया भी गया।
0: और कहते हैं ना कि बांटी गई विद्या कभी नष्ट नहीं होती, इसी प्रकार ये लोकोक्तियां आज भी बरकरार हैं और इस डिजिटल जमाने में भी अपनी अनगढ़ता के बावजूद आस्था और विश्वास गढ़ने में सफल हो पा रही हैं।
1: जरा देखिए इस कहावत में कितना विश्वास है। संगता गोसैया त नई लीले दरहा, नई खाए भुइया।
0: और इसमें तो विज्ञान है। मलकिस है मलका, रुख तरीले बुलगा।
1: बिल्कुल, बिजली यदि चमक रही है तो पेड़ के नीचे से निकल जाना चाहिए।
0: ठीक इसी तरह सरगुजा वृत्त का आस्था परक ज्ञान देती है वह लोकोक्ति, जिसे समझने बूझने के दूसरे चरण में हम आए हैं इस पवित्र तपोभूमि में, जो टांगी नाथ के नाम से प्रसिद्ध है।
1: सरगुजा गाजम गुजा, माटी के देव पहाड़ की पूजा, अर्थात यहाँ के अधिकांश देवालय पहाड़ पर स्थित हैं और उनके देवता लोक देवता हैं और लोक विधि से ही पूजे जाते हैं।
0: और लोक विधि निर्धारित करते हैं यहाँ के स्थानीय पुजारी यानी बैगा, जिन्हें देवार भी कहा जाता है। तो बैगा पुजारी के मंत्रों से गुंजायमान इस हरी भरी मनोरम पहाड़ी पर आए हैं हम, जहाँ विराजमान हैं बाबा टांगी नाथ।
1: अंबिकापुर कुसमी मार्ग पर स्थित ग्राम डीपाडी से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व कोण पर ग्राम सोनपुर के सिवान पर स्थित है ये पावन और पौराणिक स्थली, जहाँ झारखंड की सीमा भी आकर लग जाती है, जैसे वो कहना चाहती हो कि टांगीनाथ हमारे भी हैं।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाबा टांगीनाथ उनके भी हैं। ये जो शिव मंदिर है वो तो छत्तीसगढ़ में है, और जो उधर जो तपस्थली दिख रही है वो झारखंड में है।
1: हाँ, स्थान तो प्राचीन है, प्रादेशिक सीमाएं तो हमने बाद में खींची।
0: बेशक, आस्था और विश्वास पर कोई हदबंदी नहीं होती। आज भी दोनों ओर से ग्रामीण भक्तों की भीड़ मनोकामना लेकर और मन्नत पूरी हो जाने पर चढ़ावा लेकर यहां आती है, और शिवरात्रि में तो मत पूछो, इतना बड़ा मेला लगता है कि ये पूरी ढलान जयकारे से गूंज उठती है।
1: मगर ये टांगीनाथ कौन बाबा या कौन देवता थे, ये भी तो बतलाओ।
0: सुनो, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा, बेग दिखाहु मूढ़ न तयाजू, उलटऊ मही जह लगित वराजू।
1: ये तो रामचरितमानस का धनुष यज्ञ प्रसंग है, परशुराम जी के आगमन का। धनुष टूटने पर वे क्रुद्ध मुद्रा में आकर समूचे दरबार को दहला देते हैं।
0: हाँ, ये वही परशुराम है, यहाँ के टांगीनाथ के नाम से पूजे जा रहे हैं।
1: किंतु टांगीनाथ कितना अजीब नाम है।
0: देखो, जो पूजनीय हो जाते हैं उनके कई कई नाम हो जाते हैं, कुछ तो गुण अनुसार और कुछ स्थान परक। परशुराम जी भी कई नामों से जाने जाते हैं, भृगुपति, परशुधर, कुठारक आदि आदि। तो एक नाम सरगुजा आने पर सरगुजिया लोगों ने भी रख दिया, कोई आपत्ति
1: नहीं? कोई आपत्ति नहीं, मगर टांगी से उनका क्या संबंध? टांगी तो लकड़ी काटने का औजार है।
0: देखो, परशु आर्यावर्त का नया विकसित हथियार था।
1: अच्छा।
0: जिसे लेकर वे इस तपोवन में आए, तब तक सरगुजिया लोगों ने ऐसा हथियार नहीं देखा था, और जब देखा

0: देख तो कौन जोगी बाबा हमर बने किंदरत है।
1: नावा कस लागत है, टांगी धरी से लकड़ी उकड़ी काठी की
0: बाकी अड़बड़ टांगी हवे, एक भावर किंदरल कस। इमे लकड़ी कैसे कटाही?
1: चोक चोखार हवे जी।
2: अरे कतरो चोक चोखार होए, सोझ रही तबे ना खप दीना गड़ाही, और गड़ाबेच नहीं करही तो कैसे फारही।
1: चला तो गोड़ोच लगाब और पूछबो करब।
3: गोड़ लागत ही बाबा महाराज।
4: आयुष्मान भव,
5: नावा आए हन महाराज।
4: हाँ, नया ही समझो। तुम्हारे गांव की पास वाली पहाड़ी पर आश्रम बनाकर रह रहा हूँ, कुछ अनुष्ठान करूंगा, कोई आपत्ति?
1: हमर ला का आपत्ति महाराज, हमर कर तो भाग खुल गई, साधु महात्मा कर रोज रोज दर्शन होही। अब
4: और कुछ
5: महाराज? ए राउर टांगी, मोर कहे के मतलब हवे ये मधे कर टांगी नहीं देखे रहन।
4: ये तुम्हें टांगी दिख रही है?
5: हाओ हाओ महाराज, बाकी ये बताता कि मैं लकड़ी कैसे कटाही।
4: ये टांगी नहीं है मूर्ख, परसु है परसु, इससे लकड़ी नहीं सिर काटा जाता है।
1: ए दाई रे, हमन कर जीन कटिया गोसाइया, हमन कर जीन कटिया।
5: अरे चुप चुप रोवंटिन, हमन कर मुड़ काबर कटाही रे।
1: अच्छा।
5: हमन का करे है महाराज, बोकरा भैंसा कर पूजा देत होही।
4: निरीह पशुओं का सिर नहीं काटता मैं सिर काटता हूँ दुष्टों का, आतताई राजाओं का।
5: हाँ महाराज हाँ, नहीं जानत रहन ते ही ले तो।
1: माफी दिया गोसैया, गोर लागा थान।
4: कोई बात नहीं, उधर आओ तो आश्रम की ओर आना, मुझे अपने अनुष्ठान के लिए तुम जैसे भोले भाले ग्रामीणों की आवश्यकता पड़ेगी।
1: मतलब ये कि परशुराम जी के इतना समझाने के बावजूद अभी तक लोग टांगीनाथ ही कह रहे हैं।
6: हाँ, परशु जैसा शब्द लोगों के जुबान पर चढ़ा ही नहीं होगा। आओ आगे चलें।
1: चलो,
6: वो देखो शिव मंदिर है, छोटा है लेकिन बहुत पुराना।
1: इसे परशुराम जी ने स्थापित किया था?
6: कुछ कहा नहीं जा सकता, मंदिर तो नया है किंतु शिवलिंग और जलहरी बहुत पुराने। आओ भीतर चलें।
1: चलो।
6: ओम नमः शिवाय।
7: जय हो शिव शंकर महादेव, हम पर कृपा बनाए रखिए।
6: कृपा तो है ही, वरना इतनी दूर से आकर इस बीहड़ क्षेत्र में कैसे दर्शन पाते।
1: अच्छा ध्यान दिया तुमने, जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो दूर से ये शिवलिंग पेड़ की ठूट की तरह दिख रहा था।
6: हाँ, पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, मगर ये पत्थर है, अनगढ़ पत्थर।
1: यानी बिना गढ़ा बिना तराशा हुआ मूल पत्थर स्थापित कर दिया गया है।
6: हाँ, मगर ये विशेष पत्थर है, इस प्रकार के पत्थर यहाँ दूर दूर तक नहीं पाए जाते।
1: तो ये कहाँ से लाया गया होगा?
6: देखो सब कुछ तो मैं जानता नहीं, किंतु यहाँ का मतलब इस क्षेत्र का लोकव्यापी इतिहास जो यहाँ के लोगों की स्मृति में है, वो कहता है कि ये पत्थर अनादिकाल से यहाँ स्थापित था, शायद परशुराम के आने के पहले से। और परशुराम ने अपनी दिव्य शक्ति से जब ये पहचाना कि ये शिव का अनादि स्थल है, तो यही आश्रम बनाने का निर्णय लिया।
1: हाँ, शिव तो आराध्य थे ना उनके,
6: और गुरु भी। और शिव ने प्रसन्न होकर परशुराम को दो हथियार दिए थे, एक था गांडीव नाम का धनुष,
1: वही ना जो राजा जनक के यहाँ था और जिसे राम जी ने तोड़ा और सीता से प्रण विवाह किया।
6: हाँ वही, किंतु दूसरे हथियार के बारे में क्या जानती हो?
1: कुछ नहीं।

0: हथियार कौन सा था ये भी नहीं।
1: बहुत सारे लोग भी नहीं जानते, जानते हैं सिर्फ इस क्षेत्र के लोग।
0: किंतु क्या जानते हैं?
1: बतलाऊंगा, अभी तो सिर्फ ये जान लो कि ये स्थान कितना चमत्कारी है।
0: हर चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए महोदय।
1: किंतु कहीं कहीं तो करना ही पड़ता है। मेरा मतलब है कि इस मंदिर के आसपास जहां भी खुदाई होती है शिवलिंग दबे पड़े मिलते हैं, बेशुमार
0: बने हुए।
1: हाँ, पत्थर के तराशे हुए। अब तो नमस्कार करना पड़ेगा ना?
0: यदि ऐसा है तो जरूर। प्रश्न किंतु ये उठता है कि इतने सारे शिवलिंग यहाँ आए कहाँ से और क्यों?
1: वो इसलिए कि परशुराम जी ने यहाँ अनुष्ठान किया था और वो था एकादश सहस्त्र महारुद्र यज्ञ, यानी 11,000 यज्ञ। जाहिर है 11,000 महारुद्र यज्ञ करने के लिए 11,000 शिवलिंग तो चाहिए ही चाहिए था।
0: तो वे कहाँ से लाए होंगे?
1: ये तो पता नहीं, किंतु लोगों का अनुमान है कि ये शिवलिंग या तो डीपाडीह के पास चैला पहाड़ पर काम करने वाले मूर्तिकारों ने बनाकर पहुंचाया, या फिर कुछ मूर्तिकार ही यहाँ आ गए होंगे।
0: हाँ, यही संभव है, क्योंकि चैला पहाड़ मैंने देखा है, वहाँ तो डीपाडीह के निर्माण का कार्य चल रहा है। बड़ी बड़ी आकृतियाँ तराशी जा रही थीं, मोटे स्तंभ वाले महल बन रहे थे। वहाँ कोई दूसरा काम कैसे हो सकता था?
1: श्रोताओं, क्या परशुराम एकादश सहस्त्र महारुद्र यज्ञ संपन्न कर पाए? सरगुजा के वनवासियों ने किस तरह परशुराम को अपना सहयोग प्रदान किया, जानेंगे विविधा के अगले अंक में, जिसका नाम है सरगुजा संस्कृति के आईने में।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिक्रमा। वाचन स्वर अंजनी कुमार पांडे, मृदुल गुप्त, कृष्णानंद तिवारी और देवेंद्र सोनवानी। प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग था अंजनी कुमार पांडे का। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं गोपेश आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, उम्मीद है रिमझिम फुहारों के बीच आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस बदलते मौसम की भीनी भीनी खुशबू का आनंद भी ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे गुंजन की गूंज केंद्रित है वन महोत्सव सप्ताह, पर्यावरण संरक्षण और मानसून काल में हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा पर। चलिए इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले गीत से। इसे गाया है जसपाल सिंह ने। फिल्म का नाम है

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, जुलाई का यह पहला हफ्ता हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में देश के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने की थी। उनका मानना था कि पेड़ों को काटना मानव सभ्यता को विनाश की ओर ले जाना है। जब आसमान से सावन की बूंदें तपती धरती को चूमती हैं तो मिट्टी से उठने वाली वो सौंधी खुशबू हमें याद दिलाती है कि हमारा अस्तित्व इन पेड़ों से ही है।

पर्यावरण संरक्षण कोई किताबी शब्द नहीं है, यह तो हमारी संस्कृति है। पुराने जमाने में बुजुर्ग हर त्यौहार और शुभ काम पर एक पौधा लगाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पेड़ है तो कल है। कार्यक्रम में बातों का दौर आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हौ फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम गुंजन में। साथियों, आज जब हम कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं और शहरों को देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के मिजाज को भुगतते हैं, तब समझ में आता है कि हमने प्रकृति से कितनी बड़ी दूरी बना ली है। आज कड़ाके की धूप, असमय बारिश और प्रदूषण जैसी समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट दिया। यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित, हरा भरा और सांस लेने योग्य कल देना है तो इस मानसून में हमें जागना ही होगा। सिर्फ एक दिन पौधा लगाकर वन महोत्सव नहीं मनाया जा सकता। असली महोत्सव तब शुरू होता है जब आप उस नन्हे से पौधे को गोद लेते हैं, उसकी रखवाली करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म जीने की राह का गीत।

जीने की राह। अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस फिल्म का गीत सुना। साथियों, जब एक बीज अंकुरित होकर पेड़ बनता है तो वह केवल लकड़ी या छांव नहीं देता, बल्कि वह हमारे हिस्से की ऑक्सीजन और हमारी सांसों का इंतज़ाम भी करता है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, ये सब हमारे देश के वे प्राकृतिक डॉक्टर हैं जो 24 घंटे हमारी हवा को शुद्ध करते हैं। इस मानसून अपने आंगन में, अपनी सड़क के किनारे या किसी भी खाली पड़ी ज़मीन पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसे बड़ा करने का संकल्प लें, क्योंकि याद रखिए, धरती को हरा भरा बनाना किसी एक सरकार या संस्था का काम नहीं है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म पराया धन का गीत।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम गुंजन में आज हम बातें कर रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह, पर्यावरण संरक्षण और मानसून काल में हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर। दोस्तों, प्रकृति की हरियाली और खूबसूरती के बीच मानसून अपने साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है और वो है हमारी अपनी सेहत और स्वास्थ्य की सुरक्षा। रिमझिम बारिश और सुहाने मौसम का लुत्फ़ उठाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन इसी मौसम में हवा और पानी में नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेज़ी से पनपते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और पेट का संक्रमण इस समय सबसे आम बीमारियां हैं। गुंजन के माध्यम से आज हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि मानसून का असली मजा तभी है जब आप और आपका परिवार पूरी तरह तंदुरुस्त रहे। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म एक नज़र का गीत।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म एक नज़र का गीत। साथियों, मानसून में बीमारियों से बचने का सबसे पहला और ज़रूरी नियम है अपने घर के आसपास कूलर में, गमलों में या छत पर टूटे फूटे बर्तनों में पानी बिल्कुल जमा ना होने दें। ठहरा हुआ साफ पानी ही डेंगू के मच्छरों का सबसे बड़ा घर होता है। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करें और बच्चों को बाहर खेलते समय पूरी सुरक्षा दें। साथियों, याद रखिए, मच्छर जनित बीमारियां कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, इसीलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। साथ ही इस मौसम में कोशिश करें

ताज़ा भोजन और शुद्ध जल का प्रयोग करें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म इंतकाम का गीत।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम गुंजन में। साथियों, मानसून के दिनों में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए

खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इस मौसम में बाहर के खुले और तली भुनी चीज़ों से बचना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा तेल और मसाले वाली चीज़ों को ना खाएं तो बेहतर होगा। बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें गुनगुने पानी या हल्के नमक वाले पानी से अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इस मौसम में उन पर कीड़े और बैक्टीरिया होने का खतरा दोगुना हो जाता है। ताज़ा भोजन करें और बासी खाने से परहेज करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान का गीत।

साथियों, मानसून में होने वाली 80% बीमारियां दूषित पानी की वजह से होती हैं। इसलिए पानी हमेशा उबाल कर या अच्छी तरह से फिल्टर करके ही पिएं। अपने पीने के पानी के बर्तनों को रोज़ साफ करें, उन्हें ढक कर रखें। इस मौसम में सर्दी खांसी होना भी आम बात है, जिससे बचने के लिए आप तुलसी, अदरक और काली मिर्च जैसे औषधि पौधों का भी उपयोग कर सकते हैं। श्रोताओं, यदि घर में किसी को तेज बुखार, बदन दर्द, उल्टी दस्त की शिकायत है तो खुद डॉक्टर बनने की बजाय तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर की सलाह लें और उनके परामर्श के अनुसार अपना और अपने परिवारजनों का इलाज करवाएं। पेश है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये प्यारा सा नगमा। फिल्म है भीगी पलकें।

साथियों, अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हमें शुद्ध हवा और साफ पानी मिलेगा, और अगर हम खुद जागरूक रहेंगे तो मानसून की बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। श्रोताओं, आज आकाशवाणी अंबिकापुर के इस मंच से हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मानसून में न सिर्फ एक पौधा लगाएंगे बल्कि अपने आसपास स्वच्छता रखकर बीमारियों को भी दूर भगाएंगे। सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन का आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नूरी।

फिल्म नूरी के इसी गीत के साथ बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने रेडियो साथी गोपेश को कार्यक्रम के आज के अंक से इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

0: अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम गुंजन में आज का
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 1 महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा अन्य आवासीय परिसरों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। नए छात्रावास और आवासीय परिसरों के निर्माण से विद्यार्थियों और चिकित्सकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कैंसर भवन के विस्तार से प्रदेश में कैंसर उपचार सेवाएं और मजबूत होंगी।

0: स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई को उनके गृहग्राम गनियारी में श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉक्टर तीजन बाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस बीच कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए रासायनिक खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। जुलाई में छत्तीसगढ़ को 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति भी मिली है। अब तक किसानों को 7,27,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद वितरित की जा चुकी है, जबकि लगभग 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार अभी भी उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुनते हैं मौसम की जानकारी। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही औसत वर्षा 12.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। प्रस्तुति सहायक हैं तरुण कुमार चेनानी। प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार।

0: नमस्कार दोस्तों और सभी साथियों को जय जोहार। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। स्वागत है आप सभी का फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। मौसम ने क्या कमाल की करवट बदली है। बारिश का मौसम जैसे ही आता है मन बस खिला खिला सा हो जाता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखने लगती है और हमारे किसान भाई पूरी उत्साह के साथ पूरे जोश के साथ खेती बाड़ी के कार्यों में जुट जाते हैं। ऐसे में हम भी उनसे बातें करना चाहते हैं कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। तो आइए करते हैं उनसे बातें इस कार्यक्रम में। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: हाँ जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी।
0: कैसे हैं आप सुरेश?
1: बिल्कुल ठीक जी, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और जब जब आपकी आवाज आती है एक पंजाब से महकती हुई सुंदर सी खुशबू आ ही जाती है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: और बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छे लगते हैं जी। और लेकिन एक छोटी सी मीठी सी शिकायत भी है, 5-6 दिन से ईमेल की गूंज में मैं गैर हाजिर हूँ।
0: तो छोटी सी भी शिकायत है और मीठी सी भी शिकायत है, तो मैं किसको मानूं?
1: आप मीठी शिकायत को माने जी।
0: जी जी, आमतौर पर क्या होता है कि बहुत सारे ईमेल हमारे पास आते हैं और ऐसे में कभी कभी कुछ ईमेल छूट जाते हैं, समय की कमी होती है।
1: लेकिन मैं तो समय से भेज देता हूँ।
0: हम फिर भी पूरी

0: कोशिश करेंगे कि आपकी ईमेल्स उस कार्यक्रम में शामिल हो सकें, और आपकी ये जो छोटी सी मीठी सी शिकायत है अपने संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएं। अब इन बातों में जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत।
1: जी, वैसे तो बारिश नहीं हो रही
0: जी,
1: काफी गर्मी है, तो गीत सुना रहे जी। बारिश का क्या पता, भगवान को दया आ जाए हम पर।
0: जी,
1: फिल्म है जीवन मृत्यु, गीत है झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, आपकी
1: हेलो
0: बात है आपके गीत कार्यक्रम।
1: जी हाँ, मैं जितेंद्र दास मानिकपुरी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जितेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ सर, बहुत अच्छा हूँ सर।
0: आपकी जो जोश से भरी हुई, खुशी से भरी हुई आवाज जब सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और बहुत एक्साइटेड होकर बात करते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। तो ये जो फोन इन कार्यक्रम आप फोन लगाते हैं, फोन इन कार्यक्रम में, तो ये कार्यक्रम आपने कब से सुनना चालू किया?
1: अभी नया नया ही जुड़ा हूँ सर, 25 से सुन रहा हूँ सर, 2025 से सुन रहा हूँ सर।
0: अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। और रेडियो सुनने से हमारे बहुत सारी जानकारियां तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी होते रहता है।
1: काम भी होता है सर जबरदस्त सर, रेडियो ऐसे मनोरंजन और ज्ञान का साधन है सर। हमारा काम भी बराबर होता रहता है सर, मैं लेस मशीन चलाता हूँ सर, बराबर सुनता रहता हूँ आपका सभी कार्यक्रम सर।
0: जी, और ये अच्छी बात भी है कि आप पूरी खुशी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने काम में भी लगे रहते हैं और हमारे कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं, तो
1: जी सर, जी सर।
0: इस खुशी को बढ़ाते हैं। जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत।
1: सर अभी सूचना मिला है सर, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी गायिका स्वर्गवास हो गया है सर, उसी का मैं आज आपके कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ सर। और एक गाना फिल्म आंखियों के झरोके से है सर, बड़े बुराई ना करे।
0: हमारी ओर से भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: मैं योगेश बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत सिरकोतंगा से जी।
0: तो श्रोता साथियों, एक सिरकोतंगा के हमारे साथी हैं जो लखनपुर क्षेत्र से आते हैं, योगेश जी, और उनसे हमारी बातचीत हो रही है। तो कैसे हैं योगेश जी?
1: मस्त हैं सर, ठीक ठाक हैं। और बारिश कभी आती है कभी जाती है, उसके मजा ले रहे हैं।
0: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको बारिश का ये मौसम?
1: बहुत अच्छा लगता है सर, पानी बारिश गिरता रहता है तो ठंडी ठंडी हवा और ठंडी मौसम ठीक ठाक लगता है।
0: और बारिश के मौसम में गतिविधियां भी तेज हो जाती हैं हमारे किसान भाइयों की, और इस समय पूरी हरियाली छाई रहती है प्रकृति में।
1: जी
0: तो

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: मैं योगेश बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत सिरकोतंगा से जी।
0: तो श्रोता साथियों, एक सिरकोतंगा के हमारे साथी हैं जो लखनपुर क्षेत्र से आते हैं, योगेश जी, और उनसे हमारी बातचीत हो रही है। तो कैसे हैं योगेश जी?
1: मस्त हैं सर, ठीक ठाक हैं, और बारिश कभी आती है कभी जाती है, उसका मजा ले रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो कैसा लगता है आपको बारिश का ये मौसम?
1: बहुत अच्छा लगता है सर, पानी बारिश गिरता रहता है तो ठंडी ठंडी हवा और ठंडी मौसम ठीक ठाक लगता है।
0: और बारिश के मौसम में गतिविधियां भी तेज हो जाती हैं हमारे किसान भाइयों की, और इस समय पूरी हरियाली छाई रहती है प्रकृति में
1: जी।
0: तो क्या सुनना पसंद करेंगे योगेश जी आज?
1: आज तेरे नाम का गाना सुनवा दीजिएगा सर।
0: कौन सा गीत?
1: उसका कोई भी सुनवा दीजिएगा।
0: तो योगेश जी, हमारे आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है सर, सब बढ़िया है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: ये फोन इन कार्यक्रम अच्छा है सर, मेरे को, मेरे हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और इंस्टा फरमाइश तो अच्छा है वो भी।
0: जी जी जी, यानी फरमाइशी कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, साथ में फोन इन कार्यक्रम भी बेहद पसंद आते हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। अब आपकी खुशी को बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कैसी हैं वी पूनम नायडू जी?
1: बहुत ही बढ़िया है, मस्त है सर जी, और मस्त बारिश हो रही है।
0: और लगता है कि जगदलपुर में जब बारिश होती है तो वहाँ पूरी प्रकृति हरियाली से छा जाती है, और तो कुछ जगदलपुर से बारिश अंबिकापुर की तरफ भेज दीजिए, यहाँ बहुत कमी महसूस हो रही है।
1: ठीक है सर जी, हम दिल से दुआ करेंगे कि आपके तरफ भी बारिश हो।
0: जी जी, और बारिश के इस मौसम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार आपने हरियाली को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर रही हैं?
1: छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं फूल के फल के, वो लगा रहे हैं सर जी, स्कूल में भी, घर में भी, और यहाँ गाँव के भी सब मिल के करते हैं सर जी।
0: जी, तो अब तक आपने कितने पेड़ लगा लिए?
1: ज्यादा तो नहीं सर जी, कम से कम 700-800 तो लगा दिए हैं सर जी।
0: क्या बात है, तो आप सब ने मिलकर लगता है ये काम किया है, आपके जो स्कूल के छात्र हैं और आपके जो घर के परिवार के लोग हैं, आप सब ने मिलकर ये काम किया है मुझे लगता है।
1: हाँ करते हैं सर जी, और पिछले साल जो लगाए थे उसमें तो फूल और फल भी आने लगे हैं सर जी, देखने में बड़ा ही सुकून मिलता है सर जी, आनंद आता है क्योंकि हम खुद लगाए थे और अभी देख रहे हैं उनके फलते फूलते।
0: आपकी बातों को हमारे कई श्रोता साथी सुन रहे हैं, 700-800 पेड़ आपने लगाए हैं, तो हमारे जो श्रोता साथी सुन रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हरियाली को और बढ़ाया जाए। अब हम आपकी खुशी को और बढ़ाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं यहाँ आपकी पसंद का गीत।
1: तो आप अपनी पसंद से कोई सा भी गीत सुनवा दीजिएगा, बारिश से संबंधित होना चाहिए। छम छम छम छम।
0: चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, हमारे कई श्रोता साथी लाइन में लगे हुए हैं, तो यहाँ अब मैं आपको सुनवा रहा हूँ आपकी पसंद का गीत।
1: आपसे बात करके सर जी और हमारी पसंद के गीत सुन, गीत की फरमाइश करके तो यहाँ का वातावरण जो है खिल खिल निखर निखर गया है सर जी। थैंक यू, दिल से धन्यवाद।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम है जी जगदीश राय गर्ग। मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं जगदीश जी आप?
1: बहुत मजे में हैं जी।
0: पंजाब का अभी कैसा मौसम है? अभी
1: मौसम तो सर बहुत ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अभी बस बरसात का इंतजार चल रहा है।
0: जी जी।
1: तो कब बरसेंगे बादल, आते हैं चले जाते हैं, बस देखते रहते हैं बादलों को।
0: जी, और मैंने सुना है कि बहुत सारे पेड़ पौधे बारिश को आकर्षित करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं, और उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा होती है जहाँ जंगल होते हैं या पेड़ होते हैं। तो वर्षा अच्छी हो और बादल आकर्षित हो, तो अपने ओर से आप क्या इस बार कोशिश कर रहे हैं?
1: सर जी, जैसे अभी वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जा रहा है।
0: जी जी।
1: और बरसात तो आएगी ही आएगी।
0: जी जी।
1: तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बरसात में दो चार पौधे तो जरूर लगाएं, जो धीरे धीरे बड़े हों और उनकी देखभाल भी करें, और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ ना कुछ बच जाए।
0: जी जी, बहुत ही अच्छी बात जगदीश जी। और आप जैसे जागरूक श्रोता हो और प्रकृति का ख्याल रखने वाले हो, तो यकीनन आपके क्षेत्र में जो वर्षा की कमी हो रही है, वो वर्षा की कमी ना हो, अच्छे से बारिश हो और मौसम काफ़ी खिले खिला रहे। वैसे आपकी बातों से ही ऐसा लगता है कि आप बहुत खिले खिले से इंसान हैं।
1: बिल्कुल सही पहचाना सर, मैं अब रिटायर हो गया हूँ।
0: जी जी।
1: और अब बस जीवन का आनंद लेते हैं, खुश रहते हैं सर।
0: तो आप अपनी पसंद का गीत भी सुन लेते हैं जब आपका रेडियो ऑन रहता है? तो आज तो आपका कॉल भी लग गया है और रेडियो ऑन भी है, तो कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: नीला आकाश।

0: बहुत सुंदर। और जगदीश जी, आपसे बात करके हमारा वक्त गुजर जाता है।
1: तो सर हमारा भी बढ़िया वक्त गुजर जाता है आपके साथ।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद पर नीलाकाश का ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: हाँ सर, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग
1: सर, मेरा नाम है रूबी भवाल, अंबिकापुर सिलसिली गणेशपुर से।
0: तो रूबी भवाल जी, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए।
1: जानते हैं सर, मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिर भी मैं रेडियो का शौकीन हूँ। बस मेरे पास एक तो रेडियो है, रेडियो को लेके अपना काम भी करते रहती हूँ, ये गार्डन वगैरह करते रहती हूँ।
0: चल, बहुत ही अच्छी बात है। और
1: जानते हैं सर, ये फल पेड़ में भी आप देखिए, बीही पेड़ है, आम पेड़ है, केला पेड़ है, नाशपाती पेड़ है, अनार पेड़ है, मैंने गिनती नहीं आपका।
0: जी, अब तो मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं सिल्फली आऊं और आपका ये गार्डन देखूं।
1: सर आइए, अभी पाइनएप्पल भी फला है, तो कम से कम मेरा घर से एक तो पाइनएप्पल भी खा लेते तो मन में खुशी तो होता है।
0: जी, आपकी जो बातों में इतनी मिठास आती है फल वाली, तो मुझे वो मिठास सुनकर ही बहुत अच्छा लगने लगता है कि आपके यहाँ जो बगीचा है, जो फल के पेड़ हैं और बहुत ही सुंदर प्रकृति है आपके घर की, तो ये जानकर ही मुझे बहुत खुशी होती है। रूबी जी,
1: गरीब आदमी घर अच्छा नहीं है, सीट का घर है सर।
0: देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है, दिल होता है। आपका दिल इतना अच्छा है, आप इतना हृदय से हमें खुशी से बात करती हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती है, मेन होता है आपका जो ये जो बात करने का जो ढंग है, जो आपकी खुशी है, जो आपका स्नेह है, वो सबसे बड़ी बात है। जी, अब आपकी पसंद का गीत जानना चाहेंगे।
1: हाँ, एक तो मेरा पसंद का गाना सुना दीजिए। बोलते तीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता, जीवन के दो पहलू है हरियाली रास्ता। यही वाला।
0: क्या बात है, जैसी हरियाली आपके घर में रहती है वैसा ही गीत आपने पसंद किया है, हरियाली और रास्ता फिल्म से।
1: जी सर।
0: चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा रूबी जी, और भगवान आपके गार्डन की हरियाली को बहुत बढ़ाते रहे, फूल पौधे और ढेर सारे फल आपके यहाँ उगते रहें, इसी कामना के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद पर हरियाली और रास्ता का ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार,
0: आपका शुभ नाम।
1: जी मेरा नाम रिजवान खान है, मैं अंबागढ़ चौकी से बोल रहा हूँ।
0: तो कैसे हैं रिजवान जी?
1: एकदम बढ़िया हूँ, बारिश अच्छी हो रही है हमारे यहाँ अभी।
0: अच्छा अच्छा, यानी बारिश के गिरते गिरते में आप हमसे बात कर रहे हैं।
1: जी जी जी, साथ में इतना

0: खुश हूँ बारिश की वजह से कि मैं साथ में एक जोड़ कपड़े घर से दुकान लेकर आया हूँ। मेरे पास छाता भी गाड़ी में रखा हुआ है और रेनकोट भी है।
1: जी जी।
0: लेकिन मैं बगैर रेनकोट बगैर छाते की दुकान तक आया हूँ पूरा भीगते हुए, बहुत अच्छा लगा। अभी भी भीगा हुआ हूँ, कुछ देर बाद कपड़े चेंज कर दूंगा। मतलब इतनी राहत मिल रही है अभी मौसम की वजह से।
1: जी जी। और आपकी ये खुशी वहाँ से यहाँ तक आ रही है और भीगते हुए आप बात कर रहे हैं, यानी बारिश का पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं।
0: जी जी जी
1: जी। और ये जानकारी बहुत खुशी होती है जब श्रोता साथी हमारे कुछ ऐसा करते हैं और जब ऐसी बातें हमसे साझा करते हैं, तो हमें भी ये जानकर बहुत खुशी होती है कि इसको पाने के लिए क्या क्या करते रहते हैं।
0: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सही है।
1: और रिजवान जी बताइए अपने बारे में कुछ।
0: मेरी ऑप्टिकल की शॉप है।
1: जी जी।
0: पावर के चश्मे वगैरह बनाने का काम है मेरा, बहुत पुराना काम है, 30 साल से कर रहा हूँ ये काम मैं।
1: जी, जी। और जो आपकी ये दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है और बहुत लंबे समय से आप ये काम करते आ रहे हैं, तो इस काम में आकाशवाणी अंबिकापुर वो रेडियो कहाँ रखा रहता है जिसमें आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं?
0: मैं न्यूज ऑन एयर जो है उस ऐप से मैं रेडियो सुनता हूँ।
1: जी,
0: अंबिकापुर।
1: बहुत
0: अंबिकापुर का तो वो जो ईमेल की गूंज वाला जो प्रोग्राम और 11 बजे 11:30 बजे जो आपकी फरमाइश आती है,
1: जी
0: ये दोनों प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम अंबिकापुर में कॉल लगा है, खुशी भी बहुत है कि पहली मरतबा बात हो रही है और आपसे बात हो रही है, ये तो और मतलब दुगनी खुशी है। ये
1: क्या बात है। तो इस खुशी को बढ़ाते हैं, जानते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: आप मुझे सुना दीजिए नाराज नहीं जिंदगी, मासूम फिल्म का। जी,
1: आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, लेकिन जो खुशी है, जो बात है, आप हमारे कार्यक्रम को सुनकर जो आनंद उठाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है।
0: आपका जो स्टेशन है अंबिकापुर, बहुत अच्छे कार्यक्रम भी आते हैं और आवाज भी बहुत साफ क्लियर और अच्छी लाउड आवाज है, और प्रोग्राम भी ऐसे रहते हैं कि अगर सुनना शुरू करो तो आखिरी तक सुनो, ऐसे प्रोग्राम भी आप लोग के यहाँ से प्रसारित होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, चलिए आपकी खुशी को बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आपके आकाशवाणी को मोबाइल ऐप प्रसार भारती के माध्यम से सुनते रहते हैं और आपकी सुरीली आवाज, मखमली आवाज को भी सुनते रहते हैं
0: जी। और मैं जब आपकी जोश से भरी हुई आवाज़ सुनता हूँ तो मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ। और जैसे ही उज्जैन से यहाँ तक आवाज़ आती है तो पूरा आकाशवाणी भी खिल उठता है।
1: बिल्कुल सर जी, ये तो आकाशवाणी से प्रेम है हमारा, स्नेह है। आज 40 सालों से आकाशवाणी के दीवाने हैं, तो आप जैसे उद्घोषक महोदय से ही हमने ये थोड़ा सा बोलना सीखा, नहीं तो इतनी कहाँ बोल पाते थे हम। सिर्फ जो वाणी की जो आवाज है वो हम सिर्फ आपके वजह से ही सीख पाए हैं थोड़ा थोड़ा
0: जी। और इस वाणी में जो आपकी मिठास है ना, भले ही आपने हमसे सीखा हो या आकाशवाणी से सीखा हो, उस मिठास को सुनकर ही मैं अपनी आवाज में मिठास महसूस करने लगता हूँ।
1: बिल्कुल सर जी, हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा, उनको खूबसूरत दिखाना, तैयार करना, यही पेशा है। 40 साल से इसी पेशे को कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, परिवार को जो भी जितने भी आवश्यकता होती है, आय की उतना परिवार की हो जाती है और बस खुश रहते हैं बस
0: जी। और हमारे कई श्रोता साथी छोटे मोटे व्यवसाय में लगे रहते हैं, आप भी अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं और एक छोटा सा दुकान है आपका, और उस छोटे से दुकान में आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहते हैं, ये जानकर बहुत खुशी होती है। तो कैसे लग रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम?
1: नहीं, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं प्रोग्राम आपके यहाँ के, और सारे प्रोग्राम जो भी आपके यहाँ फोन वाला रहता है और युवानी के दूसरे और भी जो प्रोग्राम है मोबाइल से सुन लेता हूँ। मोबाइल ऐप बहुत अच्छा जरिया हो गया है आजकल, अलग अलग आकाशवाणी केंद्रों को सुनते रहते हैं, आपके यहाँ भी जुड़ जाते हैं, कभी कभी मौका मिल जाता है हमें
0: जी। तो कौन सा गीत आज सुनेंगे आप?
1: गाना सर ये अभी बारिश के ही दौर चल रहा है तो इसमें बारिश का ही गाना सुनेंगे सर जी, ये मंजिल फिल्म का, किशोर कुमार जी की आवाज में, रिमझिम गिरे सावन।

0: बहुत ही अच्छी पसंद है। और कैसी बारिश है अभी आपके यहाँ?
1: बारिश सर अच्छी हो चुकी है उज्जैन के आसपास और उसके आसपास के मालवा बेल्ट में। किसानों के चेहरे पे खुशी आ गई है क्योंकि अभी सबकी फसल जो सोयाबीन की तरफ लगाई जाती है वो सबने अपने अपने खेतों में लगा दी है और उससे किसान भी बहुत खुश है।
0: जी, तो भगवान करके ये खुशी बढ़ती रहे और बहुत अच्छी फसल हो आपके क्षेत्र उज्जैन में और पूरे भारत में, और आपकी ये खुशी बढ़ती रहे, बस यही कामना रहेगी। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: जी, मैं ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं मानिक जी आप?
1: बढ़िया है सर।
0: और अभी कैसा मौसम है आपके क्षेत्र में?
1: जी सर, इस मौसम में हम अभी पानी गिरा हुआ है सर और धान बुआई का काम कर रहे हैं सर।
0: जब जब खेतों में ऐसी गतिविधियाँ होती है, हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के कार्यों में जुट जाते हैं और धान की खेती होती है तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है खेतों में। तो अभी क्या चल रहा है खेतों में जो धान की खेती के रूप में अभी आप?
1: तो अभी पानी तो फर्स्ट पानी गिरा हुआ है सर, ज्यादा पानी अभी गिरा हुआ है, 2-4 दिन पहले ही।
0: जी जी।
1: और पहले हम जोताई करवा चुके थे और अभी धान बुआई का काम जारी है सर।
0: जी, यानी एक एक चरणबद्ध तरीके से आप धान की खेती करते हैं।
1: सहरा कर देते हैं सर और गांची तैयार होने के बाद उसको रोपाई करते हैं। तो अगर सभी को कर देते हैं तो उस समय मजदूर न मिलने के कारण ज्यादा लेट हो जाता है। इस कारण से बहुत से धानों को हम बुआई भी कर रहे हैं सर इन दिनों।
0: जी, तो अभी जैसे खेती बाड़ी के कार्यों में तेजी है तो इस समय समय मिल जाता है हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए?
1: जी सर, आजकल तो सर अब कहना चाहेंगे हम ऑनलाइन का जमाना है तो हम डिजिटल माध्यम से रेडियो तो हमेशा चालू रहता है सर। और
0: आपके पॉकेट में रेडियो हमेशा चालू रहता है?

0: जी जी जी सर, और मैं बताना चाहूँगा सर, हम खेती ही काम है
1: जी जी,
0: और हम आपके रेडियो के केंद्र से जो खेती पर जानकारी दिया जाता है सर चौपाल के अंतर्गत में, और एक आता है कार्यक्रम खेती की बात, उसमें बहुत से हर रोज अन्य अन्य प्रकार की जानकारियाँ दिया जाता है, और चौपाल में खेती की बात आता है एक किसान वाड़ी, उसमें हर रोज हम सुनते हैं सर, और उससे हमें बहुत से लाभ भी मिलता है, उसके माध्यम से हम सुझाव को पर अमल भी करते हैं
1: जी। क्या बात है, बहुत जानकर खुशी हुई, और हमारे कार्यक्रमों से आनंद ले रहे हैं, और आनंद के साथ साथ जो जानकारियां आप लेते हैं अपनी खेती बाड़ी के कामों में, तो वो भी बहुत खुशी की बात है, और उससे आपको लाभ हो रहा है। तो इस खुशी को बढ़ाने के लिए मैं अब जानना चाहूँगा आपकी पसंद का गीत।
0: आपकी पसंद हमारी पसंद सर, आप जो गीत बजाएंगे वही हमें पसंद है, हमेशा पसंद रहती है और रहेगा।
1: क्या बात है, तो कोई भी गीत चलेगा?
0: जी जी जी सर।

0: श्रोताओं, आज की बातचीत का सिलसिला बस यहीं तक। यदि आप भी हमसे बातें करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, तो हमें आप रविवार के दिन सुबह 10:30 से 11 के बीच फोन कर सकते हैं इन फोन नंबरों पर 2319917। एक और नंबर है 2319918। अंबिकापुर से बाहर के श्रोताओं के लिए STD कोड है 07774। हमारा उन साथियों से विनम्र अनुरोध, जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वे कृपया 2 सप्ताह छोड़कर हमसे बातें करें, ताकि नए श्रोताओं का इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिले। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका दोस्त तरुण, प्रस्तुत करता थे परमेंद्र कुमार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। प्रस्तुति सहायक थे तरुण कुमार चेनानी, प्रस्तुतकर्ता थे परमेंद्र कुमार। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के 3रे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय

0: मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा है कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फीफा में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। फीफा विश्व कप के एक अन्य मैच में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है SD बर्मन का और इस गीत को पसंद किया है प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम यादव, मनोज यादव, टेकचंद यादव, महेश्वर बलेश्वर सिंह और गौरी साहू ने। कुर्मी पारा बेमेत्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा पूजा सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी ने। बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा ने। डाबर तालाब लोनी से राजा अहमद, ईशान हुसैन, आरिश हुसैन, मोती मरियम जहानी। मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घुआणकर राही, श्रीमती सरिता घुआणकर, प्रिंस एकांश घुआणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत घुआणकर, प्रणीता घुआणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश घुआणकर, श्वेता सुमित घुआणकर, ध्वनि घुआणकर ने। और ग्राम राजापुर लकरापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, हेम नारायण राजवाड़े, राजेंद्र राजवाड़े, खुशपाल राजवाड़े, उपेंद्र राजवाड़े ने। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गीत बेताब फिल्म से लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का और पसंद किया है इस गीत को ग्राम पंचायत खोड़री पोस्ट सलका विकास खंड उदयपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से आशीष कुमार पैकरा, नवनीत कुमार पैकरा, निर्मल कुमार पैकरा, चंचल सिंह पैकरा, रंजीता सिंह पैकरा, रीना सिंह पैकरा, श्वेता सिंह पैकरा ने इस गीत को पसंद किया है। सारसताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय मेरसाय, श्री भगत, हेमंत कुमार, रामखिलावन सिंह पैकरा ने संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव, तेजल यादव ने भी सुनना चाहा है इस गीत को और इसी गीत के लिए फरमाइश मिली है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर, प्रशांत रत्नेश प्रजापति का। ग्राम राजापुर लकरापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, संतोषी मरकाम, रूपमती मरकाम ने भी पसंद किया है इस गीत को। करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, दीपक चांदनी, दीपाकृति ने भी सुनना चाहा है और इसी गीत को पसंद किया है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता अमृता जोशी, लोकेश जोशी ने।

एक बार फिर से सुनिए, आवाजें हैं लता मंगेशकर बाबला मेहता की, फिल्म है चांदनी, और पसंद किया है इस गीत को देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से ही राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और पूरा श्रीवास्तव परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर ने भी पसंद किया है इस गीत को, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा ने, नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, मंगेश जाधव, आकाश, पप्पू, पवन राजे, औरंगाबाद से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज ने भी सुनना चाहा है। बनियापारा धमतरी से पत्र आया है रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी और पूरा माखीजा परिवार का। हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मिका बिरक, यशोदा साथी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से सुनना चाहते हैं इस गीत को। औरंगाबाद से पत्र आया है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश का। चांदूर बिस्वा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, खुशी वाणी, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदीहा खान, आसमा सालिया, शोएब खान ने, पोतरा मुस्ताफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। तो सुनते हैं ये गीत फिल्म चांदनी से।

चांदनी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर बाबला मेहता की आवाज़ों में। अब सुनते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सरगम फिल्म से गीत। बोल हैं आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और पसंद किया है इस गीत को गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले ने पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर ने इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौण, मोहम्मद शादाब खत्री ने ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर ने छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा ने भी पसंद किया है इस गीत को। इस गीत को सुनना चाहते हैं बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, शफरुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार ने जिला खंडवा ग्राम लोहारी से पसंद किया है इस गीत को। राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे ने खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। और इसी गीत को पसंद किया है जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज ने। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत सरगम फिल्म से।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हौ फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे।

0: पास हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: इस संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोता साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। सिलसिला फिल्म से लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, हसन कमल की शब्द रचना है, संगीत है शिव हरि का, और इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ रिंगिनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर ने। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा ने। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा लवी श्रीवास्तव ने। धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव ने। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाव यादव, रानू खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का, राधिका गजभिये ने। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनाबाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी ने। गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत सिलसिला फिल्म से।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत कुलवंत जानी का लिखा हुआ, यशुदास की आवाज़ में। संगीत उषा खन्ना का है और फिल्म है दादा। इस गीत को पसंद किया है फुलसर वाहिया कटघोरा चिरमेरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुखमणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, सौर्य और पूरा परिवार ने। मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार ने। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी ने। गांधीबाग नागपुर से अशोक मीनाक्षी, फिर से सुनिए, अशोक मीनाक्षी सावलानी, सारंग भावना जावड़ेकर ने। भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी बेबी अनिशा, सिद्ध बाबा भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा वैष्णव ने। ग्राम पंचायत खोंदला जनपद पंचायत उदयपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से जीवधन सिंह पैकरा, घुन्नी पैकरा, करिश्मा पैकरा, कलेश्वर सिंह, सोमार साय ने। मालवा रोड रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, देवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू ने। बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति, शशिकांता प्रजापति ने। और मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अशाइना, विशाल मिगलानी, सुपरिया और अनमोल धर्मपाल और रमेश मिगलानी ने। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आशा भोसले का गाया ये गीत शराबी फिल्म से। बोल हैं अनजान के संगीत मदन मोहन का है और सुनना चाहा है इस गीत को पुरानी टोली जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती नागदेव, सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनिमेश नागदेव, मास्टर अंसल नागदेव ने। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका, सुशीला दादी ने। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, सुच्चा पाठक ने। पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति, छाया बंछोर ने। ग्राम डंडगांव पोस्टर लुंड्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से सुरेंद्र भोए, राज तिलक, रविंद्र कुमार, सनातन भोए, अनूक साय, संतोष मानिकपुरी, मिथिलेश और पूरा परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। शहीद टेकराम चौक हथबंध करेली से भाई रमाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव, संजू कुमार ध्रुव, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। भाटापारा बच से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, सिद्ध बाबा भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा, शिवम वैष्णव। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले ने इस गीत को सुनना चाहा है। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत शराबी फिल्म से।

0: इस गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। और मौसम विभाग ने आज रायपुर दुर्ग सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहलें सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई को उनके गृहग्राम गनियारी में श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तीजनबाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए रासायनिक खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। जुलाई में छत्तीसगढ़ को 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति भी मिली है। अब तक किसानों को 7,27,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद वितरित की जा चुकी है, जबकि 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार अभी भी उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में व्यापक वर्षा हुई, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए और खेतों में पानी भरने लगा। रायपुर और बिलासपुर में कई स्थानों में जल जमाव की खबर है। इस बीच मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में 154 मिलीमीटर, दुर्ग में 181 मिलीमीटर और भिलाई में 115.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड

0: अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग के युवाओं के लिए कल 7 जुलाई को जगदलपुर के शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। और मौसम विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
3: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा

0: आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं, जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
2: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
2: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
2: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारे

0: जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी और नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का
1: चाहिए।
0: संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने

0: बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो
1: जी
0: बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे
1: अच्छे
0: बहुत अच्छे
1: खिलाड़ी हैं।
0: रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और
1: बिल्कुल
0: वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए अब थोड़ी देर खेल लीजिए।

0: उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहें, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई की, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठकर के हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल

0: फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: जी,
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी,
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ?
1: जी।
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है, रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती

0: विद्यार्थी के साथ ना करें।
1: जी.
0: अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे
1: देते हैं.
0: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें। और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8440433284 0632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpancell@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और NCERT के वेबसाइट पर YouTube में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक

का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन। आप सभी साथियों को स्नेहिल नमस्कार। चयन कार्यक्रम के इस अंक में पूनम उपाध्याय की ओर से। कहते हैं कि शब्द कभी कभी अधूरे पड़ जाते हैं, लेकिन नजर नजर कभी झूठ नहीं बोलती। यह बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह देती है, और ये नज़र ही है जो दिल की भाषा भी पढ़ लेती है। एक नज़र में अपनापन भी होता है, शिकायत भी, प्यार भी और इंतज़ार भी। कभी नज़र दिल को धड़काना सिखाती है, तो कभी किसी उदास नज़र बिछड़ने का दर्द भी महसूस करा देती है। इस सफर का विषय है नज़र। यह एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना छोटा है उसके अर्थ उतने ही विशाल हैं। नज़र केवल देखने की शक्ति नहीं बल्कि महसूस करने की कला है। यह मन की भाषा है, भावनाओं का आईना है और रिश्तों की सच्ची पहचान है। तो सफर की शुरुआत हम करते हैं इस गीत के साथ।

ये गीत आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। साथियों, नजर केवल देखने का माध्यम नहीं है बल्कि नजर एहसासों का आईना है। जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसकी नजर में ममता छलकती है। जब दोस्त एक दोस्त को देखता है तो विश्वास दिखाई देता है, और जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे को देखते हैं तो उस नजर में पूरी दुनिया सिमट जाती है।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म दूसरा आदमी से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। साथियों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह भी है कि जब हमारे नज़र बदलती है तो हमारे नज़ारे भी बदल जाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई खोजता है, उसे हर मोड़ पर उम्मीद दिखाई देती है। इसलिए अपने नज़रों में शिकायत नहीं, संवेदनाएं रखिए, नफरत नहीं, प्रेम रखिए।

दो कलियां, इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुन रहे थे। कहते हैं साथियों, जब होंठ खामोश हो जाते हैं तब आंखें बोलती हैं। एक स्नेह भरी नज़र किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दे सकती है। एक मुस्कुराती नज़र किसी उदास चेहरे पर खुशी लौटा सकती है। और एक प्रेम भरी नज़र किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। यही कारण है कि आँखों को दिल का आईना कहा गया है।

साजन का घर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ों में। साथियों, नज़र का एक दूसरा रूप भी है। हमारी संस्कृति में बुरी नज़र का जिक्र होता है, इसलिए लोग कहते हैं नज़र न लगे। इसका अर्थ केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि यह भी है कि किसी खुशी, किसी सफलता या मुस्कान पर किसी की ईर्ष्या की छाया ना पड़े। हमें ऐसी नज़र रखनी चाहिए जो प्रेरणा दे, सम्मान दे और दूसरों के जीवन में उजाला भर दे।

कभी कभी इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। साथियों, आज के तेज रफ्तार जिंदगी में लोग एक दूसरे को देखते तो हैं लेकिन समझते कम हैं। आंखें नज़र मिलती हैं पर दिल नहीं मिलते। रिश्ते बनते हैं लेकिन रिश्तों में अपनापन कम होते जा रहा है। ऐसे समय में ज़रूरत है कि हम फिर से इंसान को इंसान की नज़र से देखना सीखें, बिना भेदभाव, बिना ईर्ष्या, बिना जलन, बिना स्वार्थ के। क्योंकि सबसे सुंदर नज़र वही होती है जिसमें करुणा और सम्मान, प्रेम बरसता है। नज़र कहती है, यदि हम अपनी नज़रों में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी संवेदना, थोड़ा सा सब प्रेम भर लें तो दुनिया अपने आप अधिक सुंदर लगने लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप मुझे दीजिए आज्ञा इस कार्यक्रम से और आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

और इसी गीत के साथ शीर्षक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन का एक बजा है, समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम के पुनः प्रसारण में लीजिए सुनिए। एसआरआई पद्धति से धान रोपण विधि विषय पर ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में धान की खेती प्रमुख रूप से होती है। धान की परंपरागत खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। धान के खेत में पानी 2-3 इंच तक भरकर रखना पड़ता है, जिसके लिए भरपूर पानी चाहिए। यहाँ धान का औसत उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि काफ़ी कम है। पानी की बढ़ती मांग तथा भविष्य में पानी की कमी को देखते हुए धान की खेती की एक नई विधि विकसित की गई है, जो कि काफ़ी उपयोगी है। इस विधि में कम बीज व कम पानी से अधिक उत्पादन होता है। यह विधि है सिस्टम ऑफ राइस इंटेनिफिकेशन, मतलब SRI विधि। धान अधिक पानी में पनपने वाला पौधा है और अच्छी फसल के लिए खेत में पानी भरकर रखने की आवश्यकता होती है। परंपरागत विधि में पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में हवा नहीं मिलती है, इसीलिए अधिकांश जड़ें बालियों के निकलने तक कमजोर हो जाती हैं, जिससे कभी कभी फसल हवा से गिर जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत में पानी भरकर रखने की आवश्यकता होती है। परंपरागत विधि में पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में हवा नहीं मिलती है, इसलिए अधिकांश जड़ें बालियों के निकलने तक कमजोर हो जाती हैं, जिससे कभी कभी फसल हवा से गिर जाती हैं और उत्पादन में कमी हो जाती है। SRI विधि से खेत में पानी नहीं रहने पर मिट्टी में वायु का संचार होने से पौधों की जड़ों की बढ़ोतरी अधिक अच्छी होती है। इससे संपूर्ण पौधे स्वस्थ रहते हैं और इनका अच्छा विकास होता है, जिसका धान के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस नई पद्धति से धान के एक पौधे में कम 20 से 25 बालियां आसानी से आ जाती हैं। पौधों में 50 व उससे भी अधिक बालियां निकलती है। इन मुख्य विशेषताओं के कारण इस पद्धति से धान की खेती करने से उपज बढ़ती है, जिससे किसानों के लाभ में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, SRI विधि से धान की ज्यादा पैदावार होती है। प्रति पौधा कल्लों की ज्यादा संख्या, बालियों की लंबाई ज्यादा, दाने वाले बालियों की संख्या ज्यादा, बालियों में दानों की संख्या ज्यादा और दानों का वजन ज्यादा होता है। इस विधि में पौधशाला में बीज से बीज की अधिक दूरी पर बोया जाता है, जिससे बीज की खपत कम होती है। SRI विधि में खेत में पानी भरकर नहीं रखते, खेत कभी सूखा व कभी नम रखना पड़ता है, इसलिए पानी की कम आवश्यकता होती है। 8 से 12 दिन के पौधे का रोपण कम गहराई पर किया जाता है, जिससे पौधों में जड़ें व नए कल्ले अधिक संख्या में एवं कम समय में निकलते हैं और पैदावार अधिक होती है। पौध से पौध की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होने से सूर्य का प्रकाश प्रत्येक पौधे तक आसानी से पहुंचता है, जिससे पौधे में पानी, स्थान एवं पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। पौधे की जड़ें ठीक ढंग से फैलती है और पौधों को ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ एवं अधिक उत्पादन होता है। वीडर की मदद से निंदाई करने पर खरपतवार खाद में बदल जाती है एवं पौधे के लिए पोषण का काम करती है। इस प्रक्रिया में पौधों की जड़ों में हवा का आवागमन ज्यादा होता है, जिससे जड़ें तेजी से फैलती है। जैविक खाद के प्रयोग से भूमि में हवा का आवागमन एवं सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जो कार्बनिक पदार्थ की पोषण में बदलने में मदद करते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छा होता है। SRI विधि में पौधों का रोपण अधिक दूरी पर करने से सूर्य का प्रकाश व हवा उचित मात्रा में मिलती है, जिससे रोग व कीटों का प्रकोप कम होता है। यदि रोग व कीटों का प्रकोप होता है तो जैविक पद्धति द्वारा उसका निदान किया जाता है। इस विधि के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके लिए उपयुक्त पीएच मान 5.5 से 7.5 तक है। खेत को पूर्ण रूप से समतल किया जाना जरूरी है, ताकि पूरी खेत में एक समान सिंचाई दी जा सके और कहीं भी अनावश्यक पानी न जमा हो। यदि खेत में कहीं ज्यादा पानी जमा होगा तो रोपे गए पौधे छोटे होने के कारण उनके मरने की संभावना बढ़ जाएगी और जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा, जिससे प्रति पौधा कल्लों की संख्या कम हो जाएगी। इस विधि में जैविक तरीके से खेती करने पर जोर दिया जाता है, जिसमें भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु कंपोस्ट की खाद व हरी खाद के उपयोग करने पर ज्यादा जोर देते हैं। इस तरह किसान भाइयों SRI पद्धति द्वारा धान रोपण विधि करके फसल उत्पादन कर सकते हैं।
0: एस आर

आई पद्धति से धान रोपण विधि विषय पर अभी आप ये कृषि जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात के पुनः प्रसारण में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए बहनों के लिए कार्यक्रम घर गुसाइन।

हमर घर गोसाई सुने वाला जम्मो बहनी भैया सयान जम्मो संगवारी मन ला मैं लाली बहन ढेरे ढेरे स्वागत कर ताहो राम राम जय जोहार। देखी भाई बरखा कर मौसम अब आइज गई से और देखी हमन ला अपन स्वास्थ्य कर तो तीहा जतन करना ही है, लेकिन सबले जरूरी है हमर जो पर्यावरण कर जो असंतुलन होएगी से, जो हमर पर्यावरण कर प्रदूषण होता है, हमर आसपास कर वातावरण हर प्रदूषित होता है, हमन रोग राई से अब बिल्कुल कई ठन रोग राई हो जाता है, तो ओकर बर बहुत जरूरी है हमन ला अपन आसपास के वातावरण ला स्वच्छ रखना, तबे हमन स्वस्थ भी रहब और अपन धरती ला भी बचाए सकब। देखी ये जो बरखा ऋतु है ना, हमर पर्यावरण ला बचाए बर बहुत ही बहुत बढ़िया भाई ऋतु है, बहुत उत्तम मौसम है। काहे कि देखी हमन आज जो भी मौसमी फल मन ला खाता ही, चाहे हमन आम खाता ही जामुन खाता ही, तो अगर ओकर बीज मन ला हमन अपन कहीं पर खुद के मिट्टी वहाँ डाल देता ही और बरखा हर होता है तो अपने आप छोटे छोटे रुख मन बड़ा जल्दी जाम जाता है और ओला हमन अपन खेत के धरी धरी जहाँ जगह है वहाँ भी उगा सकता ही। देखिए हमार पर्यावरण का रक्षा बर सबले बहुत जरूरी है कि हमन अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाई, कहे कि हमार आधुनिकता के दौड़ में हमरे मन के आवश्यकता ला पूर्ति करे बर कई ठन कार्य बर कितना पेड़ पौधा मन के मने कटाई होता है, चाहे सड़क बनाता है एक जगह से दूसरे जगह जुड़ी से, देखा कितना बढ़िया बढ़िया भाई समय हर बचता है, दूरी हर कम होता है, कई ठन साधन हमन ला मिली से, लेकिन ओला बनाए बर कहीं ना कहीं हमार कितना बड़खा बड़खा रुख राई मन ला भाई काटिन है रास्ता बनाए बर, चाहे जो भी मार्ग बनाए बर, तो जरूरी है कि आधुनिकता के दौड़ में आगे बढ़ना तो विकास बर जरूरी है, लेकिन ओकर आपूर्ति करना भी हमन कर जिम्मेदारी है। अगर हमन उमन कर लाभ ला लेता ही तो हमन ला भी चाहिए कि हमन पर्यावरण बर अधिक से अधिक कदम उठाई, कठोर कदम उठाई। अब खाली सुने में नहीं है कि हमन पेड़ पौधा उगाना है चाहे ऐसे करना है, खुद हमन ला पहल करना पड़ी है। और आज हमार समाज में भी बहुत जन पहल करता है, हमार आसपास के बहुत बहनी मन छोटा छोटा जो पेड़ पौधा उग जाते इतने उतने, चाहे पीपल है आम है बरगद है, जहाँ भी मिलता है बहनी मन मिल के और ओला कहीं पर भी जाके हमन जगाए सकता ही, अपन खेत के धरी धरी में जगाए सकता ही, जहाँ भी जंगल है वहाँ पे भी हमन जगाए सकता ही, आसपास में नादा आसपास में अगर नदी है नाला है तो ओकर धरी धरी में भी हमन उगा सकता ही। जरूरी है हमन ला सोच करना और देखी हमन ला देख देख के लइका मन भी सीखी और हमारी खेत के तो लइका मन बहुत सीखीन है भाई, बड़ा सुघर सुघर पेड़ पौधा ला लेके घर से जाता है और स्कूल में अपन रोपता है, और कई ठन लइका मन जो पर साल लगाए रहीन जो पौधा मन उमन बड़ा भी हो गईन है, आओ भाई टीचर मन भी मास्टर मन भी सहायता करता है वृक्षारोपण होता है तो बहुत बढ़िया है, और हमन ला अभी भी पर्यावरण कर रक्षा करना बहुत जरूरी है, संगे संगे मिट्टी कर रक्षा करना जरूरी है। कहे कि आज हमन कई प्रकार के रासायनिक खाद कर उपयोग ला कर थी ताकि हमन ला ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले और बहुत जल्दी समय में हो जाए, लेकिन हमन ला जैविक खाद कर उपयोग करना है, ओकर से हमार मट्टी खराब होता है धरती खराब होता है, तो एक बारे में भी हमन ला सोचना है और जैविक खाद देकर खाद कर उपयोग ज़्यादा करना है। संगे संगे हमन ला ये भी सोचना है कि अगर हमन ला जरूरत नहीं है तो हमन जो भी गाड़ी है घर में ओकर उपयोग ला कम करी, कहे कि धुआं से भी हमार का पर्यावरण हर प्रदूषित होएल। और देखी और एक ठन बात बहुत जरूरी है कि जैसे हमार दादा

तो हमन जो भी गाड़ी है घर में ओकर उपयोग ला कम करी, काहे कि धुआं से भी हमर पर्यावरण हर प्रदूषित होल। और देखी और एक ठन बात बहुत जरूरी है कि जैसे हमर दादा नाना मन झोला धर के जात रहिन ना बाजार, तो सबले पहले घर से निकले पर झोला धरें, फिर साइकिल में ओला टांगे, फिर जाएं। तो समझ लेवा कि वही दिन ला अगर हमन फिर से लाभ तो हमर पर्यावरण हर फिर से पहले जैसे सुघर हो जाही, और पर्यावरण कर जो ये असंतुलन होएगी से वो हर जरूर ठीक हो जाही। तो हमन ला भी झोला धर के जाना है, प्लास्टिक का उपयोग ला एकदम हमन ला दूर करना है। हमर क्षेत्र में तो देखी प्लास्टिक जो कचरा बिने पर बहुत अच्छा पहल भी हो कि ओकर बदला में खाना और नाश्ता मिलता है, जो है यहाँ जितना भी कचरा कोई बिन के ले जाही, जो बीने वाला मन रहते मन जाते हो मनला देखी पर्यावरण का रक्षा भी होता है, संगे संगे हो मनला एक नाश्ता खाना भी मिलता है। तो ऐसे ही हमन कुछ भी पहल अपन क्षेत्र में भी कर सकता ही, पर प्लास्टिक ला बिल्कुल वो तो फेंक भी दे अब तो हमार धरती ला खराब करता है, हमार स्वास्थ्य ला बिगाड़ता है। तो प्लास्टिक का उपयोग ला हमन अपन जनजीवन का उपयोग से अगर बाहर निकाली तो हमार पर्यावरण का रक्षा हो ही, और हमार पशु पक्षी जम्मो हमार धरती ला फिर से हरियर बनाना है ओकर भी रक्षा हो ही। और देखी जब रक्षा हो ही हमार जंगल कर हमार धरती हरियर रही, और देखी हरियर हरियर हमार गाँव कति भी देखी पेड़ पौधा रुख राई रहे, तो जो हमन सवेरे सवेरे बिहाने बिहाने जो सैर करे बर निकल थी सुबह शाम, ओकर से हमन कई ठन चीज से निरोगी रहती, और हमन ला बहुत जरूरी है अभी जनजीवन ला सबसे पहला निरोगी काया, हमन ला अपन शरीर ला स्वस्थ रखे बर जरूरी है नियमित हमन व्यायाम करी और सैर करी। और डॉक्टर भी देखिए आजकल जो भी बीमारी हो जाता है, बीपी है, शुगर है, कई ठन बीमारी होता है, उसमें डॉक्टर कर भी पहला सलाह ही रहे कि सवेरे बिहाने और शाम के जरूर टहलना है, खाना के बाद भी घूमना है टहलना है और व्यायाम भी करना है। कई ठन रोग राई हमार व्यायाम से और सैर से ही कई ठन रोग राई से हमन दूर रहब और निरोग रहब स्वस्थ रहब। अब चलिए एक ठन लोकगीत ला सुनी, लक्ष्मण मस्तूरिया और संगता मनकर गाल।

0: तो सुघर अकन छत्तीसगढ़ी लोकगीतला सुनेन लक्ष्मण मस्तूरिया और संगता मनकर गाल रहीस। और आज सोमवार है और सोमवार के दिन में हमन भेंटवार्ता ला सुना थी तो शशिकला नायडू अधिवक्ता बहिन से हमर किस्मतिया बहिन कर गुड बात हो रहीस, तो का जानकारी ला देहता है चली सुनी।
1: बहनी हो घर गोसाइन कार्यक्रम में आज हमर जगाइना है शशिकला बहन, और इनका ये जो है भाई वकीला है, और इनका जग आज हम जन बात ला लेके गोट बात करबो और इनका से जो जानकारी लेबो वो गोट है बढ़ते बाल अपराध और ओकर से संबंधित कानून। तो भाई शशि बहन, सबले पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संगे संगे आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ कि बाल अपराध है क्या?
2: जम्मू रेडियो सुनने वाला भाई बहन ला हमार राम राम।

0: तो देखी बहनी, आज हमन जो बात करती हम जो हमन जो आज गोट बात करब वो बाल अपराध से संबंधित है। तो हमन देखती कि बाल अपराध, सबसे पहले तो हमन ये जान लेब कि बाल अपराध का हवे, एकर बारे में हम जानकारी ले लेती। तो देखा बहनी, बाल अपराध जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे लइका मन रहते और ओकर द्वारा जो अपराध करल जाते ओला हमन बाल अपराध कहती।
1: 18 साल से कम उम्र के लड़का बन ले,
0: हाँ,
1: यानी
0: अठारह साल
1: अठारह
0: से
1: के बाद से जो वयस्क कहलाते, नहीं ठीक कहती। अब ये बताई कि ये जो बाल अपराध है ये और का का चीज है, कैसे है ला, मतलब बाल अपराध की श्रेणी में का का आता है, लेकिन बताई।
0: तो देखी बहनी, हमन देखती कि जो लड़का मन रहते उमन कर जो दिमाग कर विकास है वो 18 साल तक नहीं हो सकत है। उमन कर जो मानसिकता, मानसिक विचार ये सब
1: दूसरे ऊपर निर्भर करे लगे।
0: हाँ, तो एकर खातिर जो लड़का मन रहते उमन ला ये समझ नहीं आते का चीज सही है और का गलत, एकर खातिर उमन ये समझ नहीं पाते। तो एकर बर उमन कर जो उम्र रखल गईन है बाल अपराध से संबंधित वो 18 साल से कम ही रखल गईन है।
1: देखिए का हो नहीं शशि बहन के परिवार में कभी कभी कहने के लड़का हर जे चीज ला देखेल, और बहरी अगर अपन संगता मन जगह है तो जे चीज ला देखता है वही चीज ला सीखेल, और ओला समझ में नहीं आया कि का सही है का गलत है नहीं। तो एक में कभी कभी अपराध के तरफ भी, जैसे छोटे में कहते ना कि कहीं स्कूल जैसे अगर पेंसिल चोरा के लाई सा है और घर में अगर ओकर ध्यान नहीं देता है तो इसने ओकर चोरी की आदत भी पड़ जाए।
0: हाँ, लइका मन जो है वो ओमन का दिमाग ऐसा रहते कि ओमन जिस परिवेश में रहते जो अपन आँख ला देखी वही ला ओमन कर ऊपर असर होते
1: सही
0: लइका मन
1: बात
0: कर।
1: है। अच्छा अपराधी बालक मान ले काकेला कही है, कौन टाइप के बालक रहते हैं जीवन का का अपराध करते हैं, बताइए पहले।
0: अब हमन देखते कि जो अपराधी बालक हम कौन ला कहते, तो समाज विरोधी जो कानून विरोधी काम जो करते लइका मन, चोरी करना, सरकारी चीज ला हानि पहुंचाना। अब कई कई लड़का मन ला हमन देखती कि नशा कर आदत हो जाते छोटे मन से, तो ओमन ला वो नशा कर पूर्ति करे बर ओमन काही जात भी काही ला चोरी करते, कुछ सरकारी चीज ला उठा के बेच दही, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ओमन कर वो आदत बनन जाते।
1: देखिए शशि बहन सरकारी ये चीज के गोट नहीं है कि मान ले कि कहूँ जब सामान उठा के बेचने वो घर में भी चोरी करे वाला
0: हाँ,
1: जात
0: घर में
1: है
0: भी कहीं भी जे ओमन ला जहाँ मौका मिलते अपन वो नशा कर पूर्ति करे बर, तो मन ला वो समाज विरोधी काम, कानूनी जो कानूनी रूप से आपराधिक काम है ओला
1: करे
0: उमन
1: लगते।
0: करे लगते।
1: देखिए महू देखे होने कि हमारे यहाँ गांव में जो है नान नान बड़ लड़का मन रहते नहीं, पहले दे माखुर गुड़ाकू ये सबसे, और धीरे धीरे पान गुटखा, और ओकर बाद देखते कि घर में उनका जो सियान मना है चाहे रोट मना है ते मन जैसे नशा में दारू पी जाता है चाहे शराब पी जाता है एकस जैसे अगर चलाता है, वो लड़का भी अगर सोचे कि काम हर बढ़िया है वो थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी लेहे बर शुरू करेल और एक लत में आ जाए है नहीं, और जब नहीं मिले तो भाई चोरी करते हैं। तो ये बताई कि एक कारण और का हो सकता है कि बाल अपराध जो है हमारे गांव घर में बढ़ाता है।
0: हमन आज के डेट में हमन देखते कि बाल अपराध बहुत सारा ऐसा कारण है जेकर कारण बाल अपराध एकदम बढ़ते जाते हैं। जे में हमन देखते कि माता जो माँ बाप रहेल ओमन द्वारा जो लड़का मन ला तिरस्कार करते, जे में हमन देखते कि लड़का मन थोड़ा थोड़ा जो बदमाशी करते वो लड़का मन ला माँ बाप द्वारा तिरस्कार करके ओमन ला एकदम
1: हाँ कब कब हो जाए नहीं कि मान के चले कि अगर स्कूल है नहीं, स्कूल से भी अगर लड़का हर घरे आते मान लो अगर कहूँ जो कहीं चोरी करी से और मैडम गुरु जी मन ला के शिकायत करी और वो लड़का ला फिर पूरा गोटा घर मिल के दुछे लागे नहीं गेते हर
0: हाँ,
1: चोर
0: तो
1: हो गया
0: माँ
1: आज।
0: बापला चाहिए कि ओला प्रेम से अच्छे से समझाए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। कभी कभी ऐसा होते कि लड़का मनला जो माँ बाप जो मारपीट तिरस्कार करते मन कर और विपरीत असर मन कर दिमाग में।
1: सही से गोटा है भाई छोटे लड़का रहता है ओके लगेल कि भाई ये मन सब गोटा मोर दुश्मनेज बन गिना है, तो एकस में भी ओला बहिरे कर जो असामाजिक तत्व तो मन रहते मन का गोट हर और बात हर सब सही लगेल है
0: हाँ, और
1: नहीं।
0: दूसर हमन देखते कि भीड़ भाड़ वाले परिवार जो संयुक्त परिवार रहते मिलजुल के सब एक साथ परिवार में रहते वो मन में लड़का मन सब एक साथ संगे संगे बढ़ते, तो कोई लड़का जग पास अच्छा खिलौना रही और दूसर लड़का पास खिलौना नहीं रही, तो ये में एक दूसर के मन में हीन भावना एक दूसरे
1: सही
0: के
1: सही
0: प्रति।
1: गोटा है।
0: हाँ,
1: हाँ भाई लगेल के ओके मिलता है वो के नहीं मिलता है ये वाला एक क्या है लड़का मन में भी रहेल ये
0: और
1: गोटा।
0: वो मन कर जो आपराधिक प्रवृत्ति कैसे बनते है? अब कोई लड़का पास खिलौना है और दूसर पास नहीं है, अब वो क्या है वो खिलौना ला तोड़ के कहीं लुका दहीस छिपा दहीस, तो मैं धीरे धीरे स्टार्टिंग जो लड़का मन के रहते आपराधिक प्रवृत्ति ऐसे ऐसे फिर बढ़त
1: नुकसान
0: जाते।
1: करे बर्दू।

0: सर का नहीं ठीके कहा था कि भाई ओकर जगह अगर नहीं है तो वो अखेले नहीं दही ओकर सामान ला तोड़ फोड़ कर दही। ठीक कहा थी और एक
1: कि
0: अलावा
1: सर
0: का कारण है
1: हमन देखते कि जो मानसिक अयोग्यता वाले मानसिक रूप से जो कमजोर लड़का मन रहते
0: हाँ
1: उमन कर सही और गलत कर समझ नहीं होते, जिनमें उमन ला ये समझ ही नहीं आते कि ये करे से हमन ला का नुकसान होई, ये कर का परिणाम होई। तो ऐसा जो मानसिक रूप से कमजोर लड़का मन रहते ये मन भी धीरे धीरे आपराधिक कामला करत जाते।
0: अच्छा तो ये बात भी सही कि भाई देखिए मानसिक रूप से कोनो कोनो लड़का मन विकृत रहबेज करते मन कहीं गोटला नहीं समझे और ये ना लक्षण बचपने में दिखेल कि अड़बड़
1: हाँ
0: जिद्दी
1: उमन
0: रहते
1: ला क्या है माँ बाप ला ध्यान ज्यादा ध्यान दे के जरूरत होते
0: सही
1: हैं
0: छोटा है
1: ऐसा।
0: लेकिन अब बताइए अब काका हो सकता है।
1: हमन देखते कि परिवार की जो आर्थिक दशा है ये भी जो लड़का मन कर आपराधिक प्रवृत्ति पर काफी असर देखे में आते हैं।
0: सही बात
1: जैसे
0: है।
1: अब कोई लड़का मन ला काही चीज की जरूरत होते हैं और परिवार में उस चीज को पूरा करे के सक्षम नहीं होते, तो ऐसा में वो लड़का मन का करते बाहर चोरी इधर
0: गलत
1: उधर का
0: काम करते
1: काम
0: हैं।
1: गलत काम
0: हाँ।
1: करत जाते हैं, तो ऐसा में भी फिर बाल अपराध जो बढ़त जाते हैं।
0: सही बात है। अब देखिए कहा है कि घर में आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है और संगता मन जग अगर अभी के जैसे गोटला ले बगर ससी बहन तो मोबाइल हर एक ठो मैं तो कहता हूँ कि भाई एक ठन लेका जग देखो मैंने कि हमारे गांव में करी गोटला बताता हूँ कि उमन जग एगो लेका जग बढ़िया बढ़िया वाला मोबाइल रही एक झन जग नहीं रही तो ओहर अपन दाई दादा मन जग ढेरेच मने जीरा करत रही कि भाई महूला चाहिए महूला चाहिए। और देखिए एकस में मन में हीन भावना आ जाए कि मोर संगता जगह है मोर जग नहीं
1: मोर
0: है।
1: जग नहीं है, यही में फिर धीरे धीरे जो लड़का मन रहते हैं उमन जो मानसिक विचार में परिवर्तन होके फिर उमन जो आपराधिक गतिविधि है उनमें ज्यादा
0: भाग ले लेते हैं। सही जो बोटा है। देखिए एक चीज़ आ हुआ है ससी बहन की जो आज हमारे समाज जो है बढ़त जाता है कहते हैं कि भाई नवा नवा तकनीक आता है नवा नवा भाई जो तरीका है जेकर से भाई टेक्निकल चीज़ में आगू बढ़ाता है लेकिन ये नवा नवा चीज़ भी ना जैसे कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट ये भी हमारे लड़का ला आपराधिक प्रवृत्ति की गति बढ़ाता है कहूँ ना कहूँ एक भी नुकसान है।
1: हाँ लड़के मन करके जो दिमाग है वो ज़्यादा विकसित 18 साल तक तो हम यही समझते कि उमन कर जो दिमाग है पूरा विकसित नहीं होते हैं, तेकर खातिर उमन जब मोबाइल और टेलीफोन टीवी वगैरह जब यूज़ करते हैं तो मन ला माँ बाप ला चाहे कि ध्यान
0: देख ध्यान
1: रखें,
0: देना चाहिए भाई लेकर
1: क्योंकि
0: मोबाइल में
1: आजकल जो
0: देखत है।
1: मोबाइल है
0: हाँ हाँ
1: उसका
0: गलत
1: फ़ायदा
0: उपयोग
1: है तो उसका गलत
0: नुकसान
1: उपयोग
0: भी
1: भी।
0: है। सही बात है। शशि बहन ये बताए कि देखिए बाल अपराध पर जो है कतका सीमा निश्चित करल गई से है कि भाई कितना सीमा तक जो है ये मनला भाई एकदम कड़ा सजा नहीं मिलना चाहिए ये टाइप का कुछ ऐसा कुछ नियम कानून है का।
1: हमारे देश में ऐसा कानून बनल है जिसमें हमन देखते कि जो लड़का मन है 18 साल से कम उम्र के जो लड़का है उमन ला बाल अपराधी के रूप में रखल गए हैं। 18 साल से कम उम्र के जो लड़का मन कुछ असामाजिक कार्य कर ही चाहे आपराधिक गतिविधि में भाग ले ही तो उमन ला हमन बाल अपराधी के रूप में देख सकत ही।
0: अच्छा ये बताइए कि जैसे बाल अपराधी मन रहते हैं तो एमन कर सजा कर भी मतलब कुछ नियम कानून हो ही नहीं कि मतलब कौन प्रकार के सजा देना है क्या करना है।
1: हाँ उसका प्रावधान कानून में बनाया गया, जो बाल अपराधी है उमनला संप्रेक्षण गृह में सुधार गृह में रखल जाते हैं, उमनला समझाए जाते कि का सही है का गलत है और सजा तो होते हैं उमनला, लेकिन जो स्यान
0: सुधार के कति ज्यादा ध्यान रहे
1: हाँ
0: नहीं
1: कि लड़का मन सुधार
0: हो
1: ज्यादा
0: जाए।
1: हो सके।
0: हाँ। अच्छा ये बताइए बाल अपराध के प्रकार का है मतलब कौन कौन रिकिम के होते बाल अपराध।
1: बाल अपराध हमन देखते कि कई लड़का मनला नशा करे के आदि हो जाते हैं छोटे से संगी साथी मन संगे संगे, तो उमन फिर वही नशा वशा करे खातिर फिर आपराधिक गतिविधि में भाग लेते हैं। कई कई लड़का मन हमन देखते कि वो मानसिक रूप से शुरू से ही क्या है कमजोर रहते हैं, जेमन खातिर उमन ला सही गलत के फर्क समझ में नहीं आते तेकर खातिर उमन आपराधिक गतिविधि में। तो हमन देखते कि संगी साथी ऐसे काही चीज में लड़का मन सोचते कि ये करी तो हमन मजा आई, ऐसे ऐसे में भी बहुत
0: मनोरंजन
1: बार
0: पर भी कब कब
1: हाँ
0: अपराध कर देता था कि भाई कभी कभी क्या होलेंगे चलो ला ये काम ला करके देखे थे एक धर्म ला मजा लागल तेकर वही
1: हाँ
0: में फिर आगू
1: फिर
0: बढ़ जाते हैं।
1: दोबारा दूसर बार फिर वही काम करी, तो ऐसा करते करते कई लड़का मन तो मजबूरी में भी करते कि ओमन ला काही पैसा काही चीज की जरूरत होते तो मन कर पूर्ति करे बर काही अपराध काही चोरी काही डकैती ये सब काम में भाग लेते जाते।
0: चाहे गोटा है देखिए ऐसे भी मजा कर गोट करे नहीं है तो शशि बहन मुके लगता है नहीं कि लेके मन ला जिसे नहीं कहते कोई ला मार के आ गई। अब चार गोकर दोस्त मन कहते थे कि तय भाई हमार हीरो हो गए मार।

0: पिट कर सकत हस। तो भाई यही एक अपराध का कारण है, और मोबाइल तो भाई यही है भाई। एकर अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इमन से संबंधित कानून के बारे में चटिक बताई।
1: हमारे देश में बाल अपराध से संबंधित बहुत कानून बनल गई है, और लड़का मान से संबंधित भी बहुत कानून बनल है, जेमे हमन देखती कि बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में पारित करल गई है, जेमे 14 साल कर कोई भी बालक मनला, चाहे वो खतरनाक काम हो या
0: ऐसे कोनो काम रहे,
1: वो में काम करना एकदम मना करल गई है।
0: लड़का
1: मन से, हाँ लड़का मन से कही काम जो 14 साल से कम उम्र के हैं कोई भी काम
0: नहीं
1: कराना चाहिए, और ऐसा अगर कोई करा ही तो उमन ला भी कानून सजा हो सकत है।
0: एकर अलावा
1: बाल श्रम अधिनियम 2016 कर अनुसार कोई भी लड़का जो 14 साल से कम उम्र कर हो उमन ला रोजगार कर काम में रखना कानूनी अपराध होई, ओकर खिलाफ कानूनी रूप से कार्यवाही करल जाही। हमन पहले कर इतिहास में देखती कि लड़का मन ला 18 साल से पहले शादी विवाह हो जात रहिस, बाकी अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में यहाँ प्रावधान करल गई है कि कोई भी लड़का जो 18 साल लड़की मन और लड़का मन 21 साल से कम हुई तो मन कर जो शादी अगर पहले कर दिया जाए तो कानूनी रूप से
0: मतलब
1: अपराध होई, और ओकर खातिर ओकर माँ बाप ला लड़का मन सब ला कानूनी रूप से सजा कर प्रावधान करल गई है।
0: देखिए बहुत अच्छा गुड बताएं कि हमार कानून में है कि लड़का से बाल श्रम नहीं कराल जा सकता है, और बाल विवाह नहीं कराल जा सकता है, ओला रोजगार के श्रेणी में भी ला करके कि भाई कम उम्र के अगर लड़का है 18 साल से कम करा है तो ओला रोजगार वाला में भी नहीं रखल जा सकता, मैंने कोनो तरीका से 18 साल से कम उम्र के लड़का कर जो है शोषण नहीं हो सकता है। संगे संगे देखिए बहनी हो, एक ठन गोट मैं आप मन से यही कहना चाहूँ कि अपन लड़का ऊपर पूरा ध्यान देना है, घर में होए वाला गतिविधि, घर में होए वाला बात व्यवहार, घर में अगर कोई सियान चाहे रोड में नशा पत्ती करता है, ये जम्मो छोटा छोटा गोट हर हमार बर कबो कबो और हमार लड़का पर बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो देखिए बहनी हो, हमार लड़का बाल अपराध कति झिन बढ़े एकर बर हमन ला ही ध्यान देना है, और हमन ला सचेत रहना है कि ऐसा कोई काम ना हो जेकर से हमार लड़का बिगड़े। शशि बहन हमार कार्यक्रम में आइन और अधिक सुगर जानकारी दहीन, एकर बर इनकर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, तो भेंटवार्ता ला सुने बाल अपराध के बारे में शशिकला नायडू बहन खुद अधिवक्ता हैं, विस्तृत जानकारी दहीन। अब चलिए एक ठन भोजपुरी लोकगीत ला सुनी, राम लल्लू पांडे और संगता मंत कर गाल।
3: अंगुरी में डसले भी

हाँ, तो यही भोजपुरी लोकगीत के संगे अब हमार कार्यक्रम से विदा लेह के भी बेरा होएगी से। तो लाली बहिन ला दे विदा, फिर बेटा हूँ, राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों के लिए कार्यक्रम घर गोसाइन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। लीजिए पेश है ईमेल की गूंज कार्यक्रम।

ईमेल की गूंज कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है पूनम उपाध्याय की ओर से। आज इस अंक में हूं मैं आप सभी के साथ। साथियों, सुरों की महफिल सज चुकी है और गीतों का कारवां भी तैयार है। फरमाइशी फिल्म संगीत के इस रंग कार्यक्रम में तैयार हो जाइए सुरों और संगीत मधुर यादों के इस मनमोहक यात्रा के लिए। और अब पढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत सुनने के लिए हमें भेजा है फरमाइश इन सभी श्रोताओं ने। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर ने। स्टेट बैंक नगर पश्चिम बिहार नई दिल्ली से लव शर्मा, रोशनी शर्मा ने। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया ने। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शव्या रामटेके। बालाजी चौक से ओ टी श्रीवास, शेख आजाद, पोपोरानी। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार ने। चर डोंगरी पिपरिया जिला कबीर धाम, छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी ने। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव ने। ग्राम सौंगा मगरलोट से सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन ने। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा ने। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत सर फिल्म से कुमार सानू की आवाज में। कतिल शिवाई की शब्द रचना है, संगीत है अनुर मलिक का।

ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में सर फिल्म से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं जशपाल सिंह कल्याणी मित्रा को फिल्म सावन को आने दो में। गौहर कानपुरी की शब्द रचना है, संगीत है राजकमल का, और सुनना चाहा है इस गीत को दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर ने। गांव कमल मंडी, जिला खुर्द, झालवाई राजस्थान से अनूप सिंह नथावत। चांदनी चौक पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन। जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, अमृता, संतोष, विनीता, कृष्णा राव और अक्षय ने सुनना चाहा है। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। गांव कमल मंडी, जिला खुर्द, झालवाड़ा राजस्थान से अनूप सिंह नथावत ने सुनना चाहा है। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म है सावन को आने दो।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत, वर्मा मलिक का लिखा हुआ, लता मंगेशकर मनमोहन सिंह की आवाज़ों में, संगीत उत्तम सिंह का है और फिल्म है वारिस। इस गीत को सुनना चाहा है अकोला से सुयेश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले ने, ग्राम पंचायत सिरकोतंगा महादेवपारा पोस्ट लहपेट्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बनलू, घनु अमित कुमार, अभिजीत गोविंद, तरुण सकल राम, प्रियांशु राजकुमारी, नेहा नायरा, समायरा खुशी, सौम्या उमेश्वरी मुन्नीबाई और सोनामती माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े ने। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनित कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता और परिवार के सभी सदस्यों ने। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार ने। आलसगांव बाजार जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, प्रकाश दांगड़े, देवेंद्र भटकर, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, आप सभी ने इस गीत को सुनना चाहा है, तो सुनते हैं वारिस फिल्म का गीत।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना, लता मंगेशकर इला अरुण की आवाजों में लम्हे फिल्म से। संगीत है शिव हरि का और सुनना चाहा है इस गीत को छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौशर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमानी, अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट ने, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा ने, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान खान ने, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने, रिंगिनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, प्रियंका बंछोर ने। आप सभी सुनना चाहते हैं ये गीत फिल्म लम्हे से।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये गीत रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। रचना है वर्मा मलिक की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। सुनना चाहा है आप सभी ने इस गीत को। छत्तीसगढ़ जेल रोड रायगढ़ से ईमेल किया है इस गीत के लिए नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, बेबी जोई, रिंकी गोस्वामी, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी ने। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा ने। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अभिका सोनवने, विशाखा सोनवने ने। नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव ने सुनना चाहा है इस गीत को। जेल रोड झांसी से पसंद किया है इस गीत को महेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, नरेंद्र रोम और कशिश डोमीन। उमरखेड़ से वैशाली जाटव और शैलेश जाटव ने। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी ने सुनना चाहा है। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना बंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी ने भी इस गीत को पसंद किया है। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्य।

इसी गीत के साथ ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से

0: नेता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा

0: है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: जगन्नाथ सकानेन।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।

0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अहमद हुसैन उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में। अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत फाल्गुनी पाठक से।

और इसी गज़ल के साथ गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, सभा समापन से पहले आइए हम आपको शाम की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन, राग होगा किरवानी। शाम 5 बजे का वक्त रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का। शाम 5 बजकर एक बार फिर से सुनिए, शाम 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा में चंद गज़लें हम आपकी नज़र करेंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली में शाम 6:20 पर कुछ प्रचलित लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे।

5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम आप सुनिएगा। युवा साथियों के लिए हम लेकर आएंगे युववाणी कार्यक्रम शाम 5:30 पर। 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम पेश करेंगे 8:00। कुछ और फिल्मी गीत हम लेकर आएंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम में 9:30 पर। 10:30 पर मन भवन कार्यक्रम के तहत। ये तो थे हमारे शाम की सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय दिन के 3:21 हुए हैं। श्रोताओं, सभा समापन से पूर्व हम आपको बता दें कि FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर शाम 5:00 हम अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। यह वक्त है हमारी सांध्यकालीन सभा के आरंभ होने का। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सुनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, खड़गवां, झींगापारा, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही,

0: भगवानपुर, नवापारा, जिनिया, कनकपुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड़, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, गढ़गांव, दांतीढाब, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये साजापानी, गट्टीबुड़ा, करडेगा, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, तीतापाकेर, सोनाजोरी, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल, धरमजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 115 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, गेदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सिमरहा, बोकरा, मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के सोना खान और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, औराई, बरबसपुर, मुरुमडी, छताल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वनमंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड़, ताराझर, डडईपानी, कोलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, इस फिल्म का ये भक्ति गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वर में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है सुहाग।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत गोपी फिल्म से, स्वर है मोहम्मद रफी का।

अनुज जलोटा के गए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 होने वाले हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज की युवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा है। आज का विषय है कृषि की ओर युवाओं की रुचि। दोस्तों, एक समय था जब युवाओं के लिए सफलता का अर्थ केवल डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी बनना माना जाता था। गांव से शहर की ओर पलायन बढ़ रहा था और खेती को अक्सर कम लाभ वाला कार्य समझा जाता था। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अब युवा खेती को सिर्फ पारंपरिक काम नहीं बल्कि व्यवसाय, नवाचार और आत्मनिर्भरता के रूप में देखने लगे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रही है युवाओं की कृषि में रुचि। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। हमारा देश लंबे समय से कृषि प्रधान देश कहलाते आया है। लाखों परिवार की आजीविका खेती पर निर्भर है। फिर भी कुछ वर्ष पहले तक युवाओं में खेती को लेकर उत्साह कम दिखाई देता था। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कम आय, मौसम पर निर्भरता, संसाधनों की कमी और मेहनत अधिक होना। लेकिन अब नई तकनीकी ने खेती का स्वरूप बदल दिया है। आज खेती सिर्फ हल और बैल तक सीमित नहीं है। अब इसमें शामिल है ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन हाउस खेती, हाइड्रोपोनिक्स, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट फार्मिंग। इन तकनीकों ने युवाओं का ध्यान आकर्षित

किया है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, इंटरनेट से जुड़ा है और नई चीज़ें जल्दी सीखता है। वे समझ चुके हैं कि सही योजना और तकनीकी के साथ खेती में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों, आज कई युवा नौकरी छोड़कर मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, फूलों की खेती और फल उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ युवा तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे ग्राहकों तक अपनी उपज पहुँचा रहे हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई है और किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है। यानी अब कृषि केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग से भी जुड़ गई है। दोस्तों, आज के युवाओं की सोच पहले से अलग है। वे जोखिम लेने से डरते नहीं हैं, वे नए प्रयोग करना चाहते हैं। युवा किसान अब सवाल पूछते हैं, कौन सी फसल ज़्यादा लाभ दे सकती है, कम पानी में कौन सी खेती बेहतर है, बाजार की मांग क्या है। यही सोच कृषि को आधुनिक बना रही है। आज कई कृषि विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्था युवाओं को नई तकनीकी की जानकारी दे रहे हैं। सरकार भी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को कृषि से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्टार्टअप सहायता योजना। इससे युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों, आज आवश्यकता है कि समाज खेती को केवल मजबूरी नहीं बल्कि सम्मानजनक पेशे के रूप में देखें। हमें बच्चों और युवाओं को ये बताना होगा कि कृषि में भी करियर बनाया जा सकता है। अगर सही दिशा मिले तो खेती रोजगार देने वाला बड़ा क्षेत्र बन सकता है। युवाओं के पास ऊर्जा है, नई सोच है, तकनीकी समझ है। अगर यही शक्ति कृषि से जुड़ जाए तो भारतीय कृषि नई ऊँचाइयों तक पहुँच सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कृषि की ओर युवाओं की रुचि क्यों बढ़ रही है और ये बदलाव हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कृषि केवल अन्न उत्पादन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जब युवा इस क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं तो वे केवल अपना भविष्य नहीं बनाते बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज की चर्चा बस यहीं तक। अब आइए सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कोई जाने ना से, जिसमें आवाज़ें हैं लखविंदर और नीति मोहन की, गीतकार हैं मनोज और संगीत से सजाया है रोचक कोहली विक्रम नेगी ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चलते हैं दोस्तों हमारे प्रश्नों पर आधारित क्रम इंद्रधनुष में।

स्वागत है दोस्तों आपका क्रम इंद्रधनुष में। और सबसे पहले मैं आज के कड़ी क्रमांक 79 के प्रश्न आप सभी को बता देती हूँ, जिसे आप सभी लिख लें। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस रूट पर शुरू की गई। प्रश्न एक बार फिर से, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस रूट पर शुरू की गई। हमारा दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड 2026 में किसने बनाया है। प्रश्न एक बार फिर से, कर्नाटक में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड 2026 में किसने बनाया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। प्रश्न एक बार फिर से, लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पांचवें प्रश्न के लिए सुनिए ये गीत।

दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना उसके फिल्म का नाम पांचवें प्रश्न के रूप में आपको बताना है। दोस्तों, मैंने अभी कड़ी क्रमांक 79 के प्रश्न आप सभी को बताए हैं। दोस्तों, अब हमारे पिछले कड़ी क्रमांक 78 के सही जवाब और साथियों के नाम जान लेते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था, 2026 में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका सही जवाब है डॉक्टर बुधरी ताती। हमारा दूसरा प्रश्न था, कलर ब्लाइंडनेस में आँख की कौन सी कोशिका प्रभावित होती है, जिसका सही जवाब है कोन कोशिका। हमारा तीसरा प्रश्न था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसने जीता, जिसका सही जवाब है सुआंग जी। हमारा चौथा प्रश्न था, भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम क्या है, जिसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, पांचवें प्रश्न के रूप में हमने आपको सुनाया था ये गीत, जिसमें आपको बताना था इस गीत के गीतकार का नाम।

जिसका सही जवाब है स्वानंद किरकिरे। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कड़ी क्रमांक 78 के प्रश्नों के सही जवाब। अब आइए जानते हैं हमारे सही जवाब देने वाले साथियों के नाम। कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुणेन, साहित्य साहिल चंद्राकर। रोहांसी से मुकेश साहू, नंदनी मनीष, मयंक साहू। बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता, डिंपल देवांगन। उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा। पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू सुरेश, राज्यपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्मण सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। महाराष्ट्र से अभिजीत गवटकर राही, श्रीमती सरिता, प्रणीता सिद्धार्थ, अर्जुन गवटकर टुकटुक। नागपुर से वैशाली शैलेश गवटकर, सुमित ध्वनी प्रिंस, एकांश गवटकर। दोस्तों और भी हमारे साथियों ने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उनके नाम जानने से पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म टसन से, जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की, गीतकार हैं कौशल मुनीर और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों क्रम इंद्रधनुष में, और हमारे कड़ी क्रमांक 78 के सही जवाब देने वाले साथियों के नाम हैं दतरंगी से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, जांजगीर चापा से दिलदार मेरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मेरी, मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता, बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर, पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहेल, भारती बघेल, बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजय

विनीत रेम्बिका लीना आशुतोष अंगारे बोटसरा नैला शेर प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विभूति साहू बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। दोस्तों हमारे और भी साथियों ने सही जवाब भेजे हैं, उनके नाम जाने से पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत फिल्म आवारापन से, जिसमें आवाज़ है मुस्तफ़ा जाहिद की, गीतकार हैं साहिद कादरी और संगीत से सजा है प्रीतम ने।

दोस्तों अब मैं बता देती हूँ हमारे कड़ी क्रमांक 78 के सही जवाब देने वाले शेष साथियों के नाम। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत। दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेश, उमेश, प्रमीला, मंझूर। पथरिया भरेवा से चंदूराज सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वानिया सिंगरौल। दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी, विपुल कांबड़े। बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव। चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। रोहांसी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक साहू। चिरमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहारे, दिनेश कालेंद्री लहरे। दोस्तों आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आप भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब भेजना

चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र भेज सकते हैं। हमारा पता है क्रम इंद्रधनुष शिवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड 497001। या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है indradhanushair@gmail.com। दोस्तों, इसी के साथ क्रम इंद्रधनुष बस यहीं तक।

दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का आज की युवाणी से। जाने से पहले मैं बता दूं आपको कल के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे एक नए विषय पर युवा सोच और क्रम युवा कलाकार। तो दोस्तों, आप इजाज़त दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं समाचार। अगले कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि

0: सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है माया। संकलन और वाचन स्वर अक्षय रंजन वर्मा का।
2: मानव जीवन के रहस्यों को यदि किसी एक शब्द में समेटना हो तो माया सबसे उपयुक्त प्रतीत होती है। यह एक ऐसा विचार है जो जितना सरल दिखता है उतना ही गहन और जटिल है। भारतीय दर्शन में माया को उस शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो इस संसार को वास्तविक प्रतीत कराती है, जबकि इसका मूल स्वरूप अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। यही वह आवरण है जो सत्य को ढक देता है और मनुष्य को भ्रम में रखता है। माया केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और अहंकार में भी विद्यमान होती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, संबंध या स्थिति को अस्थायी मानने लगता है तब वह माया के प्रभाव में होता है। धन, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान, ये सभी जीवन के आवश्यक अंग हो सकते हैं, लेकिन जब इन्हें ही अंतिम सत्य मान लिया जाता है तब यही माया बन जाती है। यह धीरे धीरे मनुष्य को अपनी पकड़ में ले लेती है और उसे वास्तविकता से दूर कर देती है। आधुनिक युग में माया का स्वरूप और भी जटिल हो गया है। आज का मनुष्य आभासी दुनिया में अधिक जी रहा है, जहां वास्तविकता से अधिक महत्व दिखावे को दिया जाता है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली खुशियां, सफलता की चमकदार तस्वीरें और जीवन की सजाई हुई झलकियां, ये सब माया के आधुनिक रूप हैं। इन्हें देखकर व्यक्ति अपने जीवन की तुलना करने लगता है और स्वयं को अधूरा महसूस करता है, जबकि वह जो देख रहा

0: होता है वह केवल एक आभास होता है, पूर्ण सत्य नहीं। वेदांत दर्शन के अनुसार माया वह शक्ति है जो ब्रह्म को संसार के रूप में प्रकट करती है। यह न पूरी तरह सत्य है और न पूरी तरह असत्य, बल्कि मिथ्या है। अर्थात ऐसा अस्तित्व जो प्रतीत तो होता है लेकिन जिसका अपना स्थायी स्वरूप नहीं होता। जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तुएं जागने पर वास्तविक नहीं रहती, वैसे ही संसार भी समय के साथ बदलता रहता है। यह परिवर्तनशीलता ही माया की पहचान है। माया का सबसे गहरा प्रभाव मनुष्य के अहंकार पर पड़ता है। मैं और मेरा का भाव व्यक्ति को सीमित कर देता है। वह अपनी पहचान को अपने पद, संपत्ति या संबंधों से जोड़ने लगता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। यही अहंकार उसे दूसरों से अलग करता है और उसे असंतोष, चिंता और दुख की ओर ले जाता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो यही माया पीड़ा का कारण बनती है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या माया से मुक्ति संभव है। इसका उत्तर सरल नहीं है, लेकिन मार्ग अवश्य है। माया से भागना समाधान नहीं है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। इसे समझना और इसके प्रभाव से ऊपर उठना ही वास्तविक साधना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थाई हैं, तब वह उनसे जुड़ा रहता है लेकिन उनमें बंधता नहीं है। यही संतुलन जीवन को सहज बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माया को समझना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। ध्यान, आत्मचिंतन और सदाचार के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर झांकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। वह समझता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में निहित है। यह समझ धीरे धीरे उसे माया के प्रभाव से मुक्त करने लगती है। माया को समझने का अर्थ यह नहीं कि जीवन का त्याग कर दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखा जाए। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि हर सुख और दुख अस्थाई है, तब वह जीवन को अधिक संतुलन, धैर्य और स्वीकार्यता के साथ जी पाता है।
1: माया, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। संकलन और वाचन स्वर अक्षय रंजन वर्मा का था। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के हिंद के सहकारी आंदोलन सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश कर रहे। मुख्यमंत्री आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास काम के भूमि पूजन करें। और राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के 5वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं। ये मौका में उमन किहिन के सहकारी आंदोलन सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश कर रहे। श्री शाह किहिन के राष्ट्रीय स्तर के 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाए गए है। उमन किहिन के सहकारिता मंत्रालय पाछू 5 ले सहकारिता के माध्यम ले समृद्धि के मंत्र के पालन करत है, जिखे सेती मंत्रालय डहार ले लाखों लोगन के जीवन में बदलाव आए है। केंद्रीय मंत्री ह किसान मन ले जैविक कृषि उत्पाद के उत्पादन बढ़ाए और रासायनिक उर्वरक के संग्रह कीटनाशक के उपयोग कम करे के अपील करें। श्री शाह किहिन के पाछू 5 में सहकारी प्रणाली ल आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाए के दिशा में सराहनीय काम करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में राखे गए एक ठिन कार्यक्रम में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास कार्य के भूमि पूजन करें। इमा छात्र छात्रा मन पर आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सक मन के संग्रह, कर्मचारी मन के आवासीय परिसर समेत आने आने निर्माण काम शामिल है। कार्यक्रम ला संबोधित करत मुख्यमंत्री हकीन के स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण करी। ये परियोजना प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा ला नवा ऊंचाई दी ही और मरीज, विद्यार्थी और चिकित्सक मन ला एक हर फायदा मिली। कार्यक्रम ला

0: उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ह घलो संबोधित करिन। बता दन कि परियोजना के पहली चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास बनाए जाही, उन्हें दूसरिया चरण में कैंसर भवन के विस्तार करे जाही। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है डॉक्टर मुखर्जी के जयंती में ओमनला श्रद्धांजलि देवत ओमनला साहस राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा के शाश्वत प्रतीक बताए हैं। श्री मोदी है एक दिन आलेख मकहीन कि डॉक्टर मुखर्जी के जीवन अखंड भारत पर उखर अटल प्रतिबद्धता के प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका है आज लोकभवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती में उखर चित्र में पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दिन। राज्यपाल हकीन है कि डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र के एकता अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्य पर समर्पण जम्मू देशवासी मन पर प्रेरणा स्रोत है। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करिन। ए मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए गए रद्दा में अग्रसर होवत हमन विकसित और सशक्त भारत के निर्माण करबो। रायपुर में रखे गए दो दिन के चिंतन शिविर 3.0 काली सिरागे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीन के शिविर ले मिले सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन ला नवा दिशा दीही। उमन कहिन के पाछू चिंतन सिवन के सुझाव के आधार में मंत्रालय में ई ऑफिस मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसे पहल सफलतापूर्वक लागू करेगे है। मुख्यमंत्री हकीन के इहुदारी मिले सुझाव ला जल्दी ही नीति और प्रशासनिक सुधार के रूप में लागू करे जाही। शिविर में सुशासन तकनीक कृषि पर्यटन नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषय ऊपर विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी मन विचार विमर्श करें। गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल के नाव अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी हुई। ये घोषणा काली स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव व विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में रखे गए अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान करिन। ए मौका में उमन कहिन कि डॉक्टर तीजनबाई है अपन कला के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नवा पहचान दिलाए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाए के आदेश जारी कर दे है। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू BPL और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ता मनला बिजली बिल के मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दे जाते। पावर कंपनी हा पात्र उपभोक्ता मनले 30 सितंबर तक योजना के फायदा ले के अपील करीन है। बता दन कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के बेरा एक महीना बढ़ाए के घोषणा करे रहीन। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन ले ज्यादा उर्वरक भंडारण करे गए है जो पाछू साल के तुलना में ज्यादा है। जुलाई में छत्तीसगढ़ ला 46,500 टन DAP के अतिरिक्त आपूर्ति घलो मिले है। अब तक किसान मल्ला 7,27,000 मीट्रिक टन ले ज्यादा खाद बांटे जा चुके हैं जबकि लगभग 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक के भंडार अभी भी मौजूद है। सरकार हा कहे है कि खरीफ सीजन में किसान मल्ला खाद के कोनो कमी नहीं होए दे जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG के आवेदन फीस लौटाए बर बैंक खाता विवरण अपडेट करे के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कर दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA बताइस कि जौन उम्मीदवार मन अपन बैंक खाता विवरण के पुष्टि कर दे है उमन पर रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुके है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवार मन ही अपन बैंक विवरण में सुधार या अपडेट करीन है। नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश के जम्मू निकाय में बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल में कराए के निर्देश दे हे। विभाग ए संबंध में जम्मू नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मल्ला परिपत्र जारी करे हे। प्रदेश के अधिकांश जिला मन में पाछू दो दिन ले होवत सरलग बारिश के सेती सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए है। उन्हें कई ठिन नदियां नरवा उफान में है। दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी के जल स्तर बाढ़े के सेती महमरा एनिकट के तीर 5 फीट ऊपर पानी बोहा थे, जेखा सेती नदिया तीर के जगह मन में सतर्कता बढ़ा दे गए है। सुरक्षा ला देखत प्रशासन है महमरा गाँव जाने वाला रद्दा और पुलगांव स्थित छोटे पुलिया ला अवई जवई बर बंद कर दे है। उन्हें थनौद ले लेके अरसनारा तक नदिया तीर बसे गांव के लोगन मल्ला नदिया ले दूर रहे बर चेताए गए है। कोनो भी आपात स्थिति ले निपटे बर SDRF की टीम तैनात है। उन्हें रायगढ़ जिला में पाछू 36 घंटा ले रुक रुक के होवत बारिश के सेती कई जगह मन में सड़क मन में पानी भरे के संगे संग निचला बस्ती मन में स्थित घर में पानी भर गए है। पानी भरे के सेती प्रशासन है केलो बांध के 4 गेट खोल दे है, जेखर ले नदी के जल स्तर बाढ़ गए है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में काली 7 जुलाई के संभाग स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। ई मेला के माध्यम ले निजी क्षेत्र के आने आने कंपनी के लगभग 1500 ले ज्यादा पद ऊपर भर्ती करे जाही। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल में

0: कोनो भी आपात स्थिति ले निपटे बर SDRF की टीम तैनात हे। उहें रायगढ़ जिला में पाछू 36 घंटा ले रुक रुक के होवत बारिश के सेती कई जगह मन में सड़क मन में पानी भरे के संगे संग निचला बस्ती मन में स्थित घर में पानी भर गए हे। पानी भरे के सेती प्रशासन हा केलो बांध के 4 गेट खोल दे है जेखर ले नदी के जल स्तर बाढ़ गए है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में काली 7 जुलाई के संभाग स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। ई मेला के माध्यम ले निजी क्षेत्र के आने आने कंपनी के लगभग 1500 ले ज्यादा पद ऊपर भर्ती करे जाही। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करके जरूरी दस्तावेज के साथ मेला में शामिल हो सकत हैं। कोरबा पुलिस पाछू 1 जुलाई के छुरीकला स्थित सोनार दुकान में हुए लूट के मामला में 2 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। उन्हें एक जिन दूसर आरोपी अभी भी फरार है जेखर तलाश करे जाते। जिला के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी आज एक दिन पत्रकार वार्ता में बताएं कि तीनों आरोपी पहली हत्या दुष्कर्म और दूसर गंभीर मामला में जेल की सजा काट चुके हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहें कि सहकारी आंदोलन सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश करत है। मुख्यमंत्री आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास काम के भूमि पूजन करें और राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद। इकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं और ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जोहरा राम राजवाड़े और साथियों का गाया ये देवी भजन।

आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम का ये अगला सादरी लोकगीत। स्वर है बलराम राम और साथियों का।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और उदित नारायण का गाया फिल्म मेरे यार की शादी है का गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत जीत गांगुली और प्रीतम चक्रवर्ती का है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म मन से, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत संजीव दर्शन का है।

श्रोताओं, इस वक्त आपने अपनी रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में फिल्म खिलाड़ी का ये गीत।

अलका याग्निक और अभिजीत के गए फिल्म ये वादा रहा, सॉरी फिल्म खिलाड़ी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
5: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
9: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
8: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
9: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
8: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
9: क्यों?
8: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
10: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
11: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
12: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
11: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
12: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
11: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
12: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
10: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
13: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू

0: तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
5: कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
4: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के आवासीय परिसर सहित विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। यह परियोजनाएं प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेगी तथा मरीजों, विद्यार्थियों और चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा।
6: निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ होगा, क्योंकि मेकाहारा एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो यहां पर छात्रावास का भी आज भूमि पूजन किए हैं और कैंसर के लिए ये मेकाहारा बड़ा फेमस है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बाहर से भी लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं।
4: कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि परियोजना के पहले चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में कैंसर भवन का विस्तार किया जाएगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि डॉ मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में डॉ मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने

0: कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए पथ पर अग्रसर होते हुए हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग मुख्यालय और सभी जिलों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के अनुरूप लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकासपरक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण महमरा एनीकट के करीब 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे नदी किनारे के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने महमरा गांव जाने वाले मार्ग और पुलगांव स्थित छोटे पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया है। वहीं थनौद से लेकर अरसनारा तक नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं रायगढ़ जिले में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों में जलजमाव के साथ ही निचली बस्तियों में स्थित घरों में पानी भर गया है। जलभराव के कारण प्रशासन ने केलो बांध के 4 गेट खोल दिए हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इधर बलौदाबाजार जिले में महानदी पर रोहासी और अमेठी गांव को जोड़ने वाले एनीकट में 2 से 2.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके कारण अमेठी और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पलारी क्षेत्र और बलौदाबाजार से संपर्क टूट गया है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर संभाग के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की चांसेस है। अति भारी वर्षा के साथ साथ सीमांत भारी वर्षा भी होने की चांस है, मतलब लगभग 200 mm से ऊपर भी 1-2 स्थानों पर होने की चांस है। बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के पश्चात येलो अलर्ट जो है वो सरगुजा संभाग में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जारी किया है।
0: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 1 महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 7 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित IIIT NR में संचालित की जा रही है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में कल 7 जुलाई को संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। कोरबा पुलिस ने बीते 1 जुलाई को छुरी कला स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि तीनों आरोपी पूर्व में हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर मामलों में जेल की सजा काट चुके हैं। जेल में ही उनकी दोस्ती हुई और रिहाई के बाद उन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल और देशी कट्टे की मदद से लूट की योजना बनाई।

0: नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने आज भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित प्रणवानंद अकादमी में रोबोटिक्स लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता वितरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। और गनियारी के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी होगा। यह घोषणा कल स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विख्यात पनवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में आयोजित अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, ये वक्त है श्रोताओं आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने का। पहले जानिए हमारी सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीकंथा। शाम 7:20 का समय ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम चौपाल का। रात 8 बजे हम आपके लिए पेश करेंगे सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर और कार्यक्रम ईमेल की गूंज 9:30 पर आप सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामनी में 10:00 हम आपको सुनवाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन हम आपके लिए पेश करेंगे 10:30 पर। ये तो थे हमारे इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। और आइए अब हम आपको बता दें अपने कल के कुछ एक कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 6:30 पर। रामचरित मानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे 6:35 पर। खेती की बात में ग्रामीण किसानों को कुछ सामयिक सुझाव दिए जाएंगे, समय होगा सुबह 6:45। गूंजे जंगल कार्यक्रम में सुबह 7 बजे और गोदूली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ छत्तीसगढ़ी, सादरी और सरगुजिया लोकगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 7:15 पर। नमस्कार सरगुजा, ये कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करेंगे सुबह 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइया हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुनिएगा सुबह 10 बजे, इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे सुबह 11:05 पर। प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुनेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। खेती की बात में कुछ जानकारी दी जाएगी ग्रामीण किसानों को, समय होगा सुबह 1:05 पर। महिलाओं का

कार्यक्रम घर आंगन होगा दिन में 1:10 पर, जिसमें बहनें सुनेंगी समसामयिक सूचनाओं पर आधारित क्रम आईना। ईमेल की गूंज कार्यक्रम होगा दोपहर 1:40 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आपके लिए पेश करेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम अमर हाथी अमर गोट के साथ, और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह सुनेंगे शाम 5:30 पर। कल इसमें क्रम होगा युवा कलाकार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे। शाम 7:30 पर कल आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी। मनी टॉक और मंथन ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे कल रात 9:30 पर। ये तो थे हमारे आज और कल के कुछ एक कार्यक्रम।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 होने वाले हैं। लीजिए अब पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं तलत अजीज की गई इस गजल से। शायर हैं आनंद बख्शी।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: पेशे कार्यक्रम की अगली गजल शायर हैं कतील शिफाई, आवाज भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सबे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: रजनीगंधा कार्यक्रम के आखिर में लीजिए पेश है हरिहरन की गाई गजल। शहर है मजहर इमाम।

हरी हरण की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।

गिरत है बढ़िया बरखा पानी और खेती पाती कर काम बूता में विदायगी से सियान और सियानी। बाकी स्वागत है राउर जमझन के चौपाल कार्यक्रम में, जहां करब खेती पाती ले जुड़ल गोठ बात और हो ही खेती पाती ले जुड़ल कहानी। तो एक धार फिर से राउर जमझन के स्वागत करत हूँ कार्यक्रम चौपाल में। भैया बहनी हो और देखिए ये दे बढ़िया सुघर झमाझम बाहरी ये दे पानी हर गिरत है। अब ऐसे में देखिए ये दे हमार खेती पाती कर काम हर देखिए दे भाई बाढ़ जाए। काबर कि हमरे जोहत रहन कि कब नगद बढ़िया बरखा पानी होए और हमरे देखिए दे थरहाला करी। बाकी कई जन देखिए दे अपन थरहाला जस कस भाई व्यवस्था बनाए के करीन है, लेकिन जे मन जोहत रहिन ते मन कर चेहरा मन में कहब नहीं तो खुशी हर अजय दिशत है। काबर कि हमार सरगुजा में तो भाई नगद बरखा पानी हर होत है। बाकी ऐसे में काम बूता हर बाढ़ जाल और जब काम बूता हर बाढ़ जाल भाई तो तैयारी हमरे अजय में कर थी और वही हिसाब से देखिए दे बिहाने फिर उठ के नागर बैला कर संग निकल जाती और ये काम बूता में नगद भिड़ जाती। बाकी कुछ कुछ बात कर तिहा जतन भी जरूर करना रहे। अब वो तिहा जतन है कि जब हमारे दे जांगर हर बढ़िया रही तब ये दे हमारे काम बुताला बढ़िया से कर सकब। लेकिन एक बात आ हुआ है कि देखिए हमार जो जलवायु है तेहर बदलत है और देखिए जलवायु अगर बदलत है तो वो हिसाब से हमार खेती पाती हर भी होना चाहिए। अब अगर वो हिसाब से हमार खेती पाती नहीं है तो हु हर गड़बड़ बात है। तो कथे नहीं कि जलवायु अनुकूल जो कृषि कार्यक्रम है तेमा नहाए हमार सरकार कर बनाल और बदलत मौसम में हमरे कैसे खेती पाती कर सकत ही ते विषय में भाई बढ़िया उमें गोट बात है जानकारी है। तो हमन ला भी चटिक सजग रह के हमार जो जरूरत कर हिसाब से आए हमार जो जलवायु और मौसम है ओकर हिसाब से हमन सोच समझ के अपन खेती पाती ला करब। तो देखिए एक तरफ हमार लाभ आमदनी हर भी बढ़ी और दूसर तरफ हमारे परेशान भी कम हो। काबर की देखिए अजय जो जलवायु परिवर्तन होता है तेहर एगो बहुत बड़े चुनौती के रूप में हमार आगू में आए के खड़ा हो गई से। आओ देखी कभी ऐसे हो जाए कि ये दे अगोरा करत ही जोहत ही कि नगद बरखा पानी हो ही थारा मल्ला करब और उसे में बरखा पानी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाए कि भाई बरखा पानी कर जरूरत नहीं है और दे झमाझम बरखा पानी हो जाता है। कभी देखिए दे सूखा पड़ जाता है तो कभी देखिए नगद गर्मी हो जाता है। ऐसे बदलत मौसम में सबले बगरा प्रभाव अगर कोयला पड़ता है तो वहाँ किसान और खेती करे वाला मनसे मन। ऐसे समय में जलवायु अनुकूल कृषि अपनाए के हमरे अपन समस्या कर समाधान कर सकत ही। तो जलवायु अनुकूल कृषि कर मतलब वही है कि ऐसा खेती बाती करना जेहर बदलत मौसम कर आगू भी बढ़िया फसल उत्पादन हो सके और संग संग हमर फसल हर सुरक्षित।

भी रहे और प्राकृतिक संसाधन बनकर संरक्षण भी हो सके और हमार जो लाभ है जिला हमरे आय कथी तेहर भी बाढ़ सके। तो वही कस कृषि ला हमला अपनाना है और एक बार सबले पहले किसान मनला का करना है भाई, तो सबले पहले मौसम कर जो पूर्वानुमान है पहले ले चटिक जानकारी जुटाना है और हमला चटिक ध्यान देत रहना है कि आए वाला समय में हमर मौसम हर कैसे रही। और एक बार देखी रेडियो हर तो बहुत सुघर एगो माध्यम है जेमे बताते हैं भाई कि आए वाला समय में मौसम हर कैसे होए वाला है। संग संग कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ना है, मौसम विभाग से भी जुड़ना है और जो हमार कृषि विशेषज्ञ मन रथे तेमन कर सलाह कर अनुसार भी हमन ला बुआई करना है, उमने कर सलाह कर अनुसार सिंचाई करना है और फसल सुरक्षा से जुड़ल काम ला भी ध्यान से करना है। एकर से मौसम से होय वाला जो हमार नुकसान है तेहर बहुत बहुत कहब तो यदि कम हो सके। तो बदलत मौसम के अनुसार एक तो हमला देखी कम समय में पाके वाला और सूखा कही तो चाहे अधिक बरखा चाहे कही तो तापमान सहे वाला किसिम कर चुनाव करना चाहिए और वही हर देखी हमर बर बढ़िया हो सके। एकर से देखी अगर हमारे दूसर बात करी तो एकस परिस्थिति में भी बढ़िया पैदावार मिले कर संभावना अगर हमारे ये छोटे छोटे बात करती है करती तो बाढ़ जाए। संग संग जल संरक्षण आज करे को बहुत बड़े जरूरत होगी से काबर की हमरे देखी भाई ये दे अजय कुछ दिन पहले ले भाई ये दे हमरे कहत रहे चटिक आज कर बरखा ला छोड़ दी तो भाई बरखा हर भाई ये सो हो ही कि नहीं हो ही, थरहा मन ला कर पाप कि नहीं कर पाप और जस कस थरहा हो जाता है तो बाद में हमार देखिए दे धान में दे भाई पानी पूरी कि नहीं पूरी एकस बात रही। तो देखी खेत तालाब मेड़ बंदी चाहे बरखा मन कर जो पानी कर जो है दे भाई हमरे संचयन कर थी तेमन कर ध्यान रखना है और एगो और गोट हमरे करत रही टपक सिंचाई पद्धति कर जेला हमरे ड्रिप कथी ओकर भी व्यवस्था करके ए तकनीक मनला अपनाए के भी पानी कर बचत भी कर सकत ही अब एला हमरे प्रबंधन भी कह सकत ही। संग संग माटी कर उर्वरा क्षमता ला भी बनाए के रखना भी एगो बहुत जरूरी काम हो जाए ओकर बर हमरे हमेशा गोट बात करत रहती किसान भैया बहनी हो कि माटी कर परीक्षण हमला जरूर कराना चाहिए और परीक्षण के आधार पर ही जो जरूरत कर हिसाब से देखिए दे खातु मन कर उपयोग हमला करना चाहिए। तो यह जरूरी बात हो जाए छोटे छोटे बात है तेला हमला जरूर ध्यान रखना चाहिए और संग संग एक बात कराऊँ देखी ये बदलत मौसम में कीट और जो व्याधि मना है रोग मना है तेमन कर प्रबंधन ऊपर भी जरूर हमला सोचना चाहिए और एकर बर देखी जो हमार कृषि विशेषज्ञ मन रहते हैं वैज्ञानिक मन रहते हैं समय समय पर देखिए दे भाई हमार रेडियो कर माध्यम से भी चाहे राउर गांव में भी बुले बर आते हैं तो अपन स्तर से बढ़िया अमन सलाह देते हैं देख के कि राउर खेत में राउर खेती में कौन तरह कर कीट व्याधि कर संभावना होता है उपाय बताते हैं। ये उपाय ला भी भैया बहनी हो अमन ला जरूर अपनाना चाहिए। अब ये छोटे छोटे बात कर अगर हमारे ध्यान रखब तो जरूर देखिए दे भाई हमार खेती पाती में लाभ हो ही। बाकी एक बात और है कि देखिए आजकल दे कई तरह कर समस्या आता है और वो समस्या है देखिए भाई दे कार्बन कर तो हमरे कथी कार्बन फुटप्रिंट जो होल तेला घटाए में जो हमर जो भूमिका है तेहर बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। ये देखिए हमर जो कही तो जीवनचर्या है हमर जो दैनिक जीवनचर्या है दैनिक जीवन गतिविधि है तेकर से भी वातावरण हर खराब होते है। वातावरण में जो उत्सर्जित होए वाला जो ग्रीन हाउस गैस है जे मन हमर जो वातावरण है तेला खराब करता है गर्मी ला कही तो विशेष रूप से बढ़ाता है और वहू में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड कर जो मात्रा है तेहर बढ़त है। तो एक का कारण हो सके तो हमरे जानत ही जम छो में देखी ये दे गाड़ी छकड़ा कर नगद हमरे दे उपयोग करत ही साग भाजी भी लेहे बर जाना है तो फटफटी ही काला रहे तबे जाबो रेंगना तो बंदे छोगी से और साइकिल तो दिसबे नहीं करें। तो एकस में देखी भाई हमरे चटिक सुकुआरी ला कम करी तो भाई नगद दे दे जो हमर भूमिका है कहते ही कार्बन फुटप्रिंट घटाए में हमर जो भूमिका है तेहर भाई बढ़िया हो सके। संग संग जो प्लास्टिक का उपयोग है तेला भी अगर हमरे कम करत ही तब भी हमर भूमिका और बढ़िया हो सके हमरे अपन तरफ से योगदान दे सकते ही कार्बन कमी में। संग संग देखी बिजली कर भी हमरे भाई नगद उपयोग करती गर्मी मन में तो कही कि रद्द

बाद रात बाद एदे पंखा मन चलत रहते और कूलर मन चलत रहते और रिकिम रिकिम कर मशीन मन भाई एदे ठंडा करे मधे चलत रहते हैं। जम हर देखी तो एक कार्बन ला बढ़ाए में अपन योगदान देते और ओकर चारू हमार वातावरण हर खराब हो जाए। तो चट्टी हमन ला छोटे छोटे बात कर ध्यान रखना है, छोटे छोटे बात कर तिहा करके अपन पर्यावरण ला अपन वातावरण ला बढ़िया सुघर बनाना है। और जरूर एक जन समझी तेकर भाई दूसर दूसर तेकर तीसर और इसने अगर हमरे धीरे धीरे समझते ही नहीं तो जरूर हमर तरफ से अपन पर्यावरण ला बढ़िया बनाकर सुघर योगदान हो सके। बाकी मैं कहत रहन कि सुघर बरखा पानी गिरगी से और देखी खेती पाती कर तैयारी मन में अझेले चलत हुई कि बिहाने उठते उठते जुआ ला निकालना है कि पैना ला तैयार करना है कि भाई यदि नांगर ला हेरना है कि भाई बैल मन ला उठ के यदि चारा पानी देना है कि ट्रैक्टर मन ला यदि भाई ले जाना है। बाकी भाई सुघर खेती पाती तो करना है चाहे जैसे करी। तो देखिए सुघर कन गीत मौसम और अभी कर हिसाब कर नांगर जोते जाबो सुनत ही अब एक गीत ला गाइन है प्रभुनाथ वैष्णव और उनकर संतामन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान भैया बहनी हो, अजय सुनत रहन संदेश। अब संदेश ले पहले हमरे सुनेन प्रभुनाथ वैष्णव और उनकर संता मनकर गायल सुघर कन लोक गीत। बाकी खरीफ कर भाई ये दे बढ़िया, खेती पाती में हमरे दे भीड़े वाला ही, काबर की बरखा पानी हर भी एक दो दिन में नागा दे दे होई से। देखिए ओ समय में भाई हमर जग चट्टी के दे तिहा जतन कर जरूरत हो जाए, और तिहा जतन में देखिए एक बात ऐसे है नहीं कि जब हमरे खेती पाती करत ही तो भाई संतुलित उर्वरक प्रबंधन हर एगो महत्वपूर्ण बात हो जाए। देखिए हमरे अक्सर ऐसे करती नहीं कि बगरा उत्पादन होई और ए आशा में नहीं, देखिए बस यूरिया और यूरिया लाए दे नगद मात्रा में दे डाल देती, अब ये सोचती कि भाई बढ़वार हर बढ़िया हो ही और भाई ये फसल भी बढ़िया हो ही। लेकिन शुरू में बढ़वार हर तो भाई बढ़िया रहे, हमला बढ़िया दिखेल और भाई वो हिसाब से हमरे खुश भी हो जाती, बाकी बाद में देखी पौधा मन कमज़ोर हो जाते हैं, संग संग रोग राई मन कर भी संभावना हर प्रकोप हर बढ़ जाए और उत्पादन और ओकर गुणवत्ता दोनों हर देखी प्रभावित हो जाए। अब ऐसे में देखी हमर संग संग माटी कर जो उर्वरा क्षमता है ते हर घट जाए, ऐसे में खरीफ में विशेष रूप से हमला उर्वरक प्रबंधन कर तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। और उर्वरक प्रबंधन कर मतलब इतने छे कि माटी कर जरूरत कर हिसाब से, फसल कर जरूरत कर हिसाब से ही हमला उर्वरक देना है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो पोटास हो, जिंक हो, सल्फर हो, चाहे आने का ही चीज़। अगर हमरे देहत ही तो हमरला जरूर पता होना चाहिए कि हमर फसल और माटी कर मांग कौन खाद कर है, कौन उर्वरक कर है। अब एकर जानकारी बर सबले बढ़िया उपाय हमर जगह और वो है माटी परीक्षण। अगर हमरे समय ऊपर माटी परीक्षण करा ले थी तो भाई मृदा स्वास्थ्य जो पत्रक रहेल वो में हमरला लिख के देते हैं कि राउर जो है माटी में कौन कौन पोषक तत्व कर मात्रा केतरा केतरा है और कौन फसल लेब तो केतरा

कौन पोषक तत्व ला राहुल ला डालना है, तो ये बात कर भी ध्यान रखना है। और वो में हमन ला देखी भाई जरूरत कर हिसाब से ही डालना है। और वो में देखी भाई फास्फोरस होगीस चाहे पोटास होगीस जम जात कर भाई उमें लिखल रहे कि कौन कौन ला केतरा डालना है। और ये हर माटी परीक्षण से हमन ला पता चल जाए। और एक बात कर आओ उर्वरक प्रबंधन में विशेष रूप से ध्यान दे कर जरूरत है हमन ला, वो है रासायनिक उर्वरक मन कर साथ साथ जैविक खाद जैसे कि गोबर सड़ल गोबर कर हमरे खाद भाई उपयोग करती वह हरा है, वर्मी कंपोस्ट होगी चाहे हरी खाद जिला हमरे कथी तेमन कर भी उपयोग करना चाहिए। कुल मिलाए के अगर कही तो भाई रासायनिक खाद कर संग संग हमरे अगर जैविक खाद कर भी उपयोग करती तो वो हर देखी पौधा मन भर भाई बहुत सुगर होल और पोषक तत्वला भाई बढ़िया से वह आसानी से वह उपलब्ध कराए। और माटी पर भी ओहर बहुत फायदेमंद रहेल तेला भी हमन ला ध्यान रखना है। काबर की जो माटी कर सूक्ष्म जीव है तेमन में भाई सक्रिय रहते हैं और एकर से माटी कर जो स्वास्थ्य है तेहर भाई बढ़िया होल और लंबा समय तक उत्पादन क्षमता हमर माटी कर बने रहे। तो उर्वरक प्रबंधन और बहुत महत्वपूर्ण हो जाए काबर की खरीफ फसल में उर्वरक मन कर सही समय पर प्रयोग भी उतरे महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आने चीज मन है। नाइट्रोजन कर पूरा मात्रा एक साथ दे कर बजाय अगर हमरे थोड़ा थोड़ा मात्रा में ओला बांट लेती और अलग अलग चरण में अगर ओला देती तो ज़्यादा बगरा लाभ दे वाला होल ऐसे विशेषज्ञ मन कहते हैं। तो एक भी हमन ला भैया बहनी हो जरूर ध्यान रखना चाहिए। और बहुत जरूरी हो जाए वह है माटी परीक्षण, तो समय ऊपर हमन ला माटी परीक्षण जरूर कराना चाहिए। अगर प्रति आए हमार गर्मी में हमार खेत हर हमार डांड़ हर तो समय जरूर हमन ला माटी परीक्षण कर तरफ अपन ध्यान ला जाना चाहिए और ध्यान से बोला कराना चाहिए। बाकी देखिए ये दे भाई आज कर दिने हमरे गोट बात भी सुनती किसान से। अब हमर होयल आज कर किसान क्रम जेमें आज हमरे गोट बात सुनब नंदलाल महंत जी से। ग्राम असकला कर ये किसान है और बढ़िया खेती पाती करके रबी कर खेती करके कैसे लाभ कमाइन है ते विषय में गोट बात होई से। तो लगी गोट बात ला सुना थी।

0: आज आए हूँ गांव असकला। असकला का एक प्रगतिशील किसान है जो खेती कर के बढ़िया लेकिन इधर लाभ कमावत है। उनकर परिचय ल जानी और उनकर का लगे न है तेकर बारे में गोइट बात करत थी। तो राउर कर का नाम है?
1: मोर नाम नंदलाल महंत थे, रहने वाला मैं असकला कर हूँ।
0: नंदलाल महंत जी, राउर के हमार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बाकी ये बताई कि अभी देखी खरीफ कर दे मौसम चलत है, अभी राउर का खेत में लगाई?
1: तो देखा हमन अभी जैसे धान होगी, टमाटर होगी, हाँ तो अभी यही सब खेती कर वही में जुड़े हैं अभी।
0: तो ये बताई धान कर बात पहल करी कि अभी धान कर खेती कैसन है राउर कर?
1: तो देखा धान का खेती तो अभी जहाँ तक ठीक ही है।
0: कतन की पानी अभी बहुत तरंग लठंग करता है, राउर जग पानी उनी कर व्यवस्था है?
1: तो देखा व्यवस्था तो है, जैसे ट्यूबवेल वेल होगी तो किधर जैसे अभी बरसात कर तो भाई ऊपर वाला पानी जो गिरल तो भाई बहुत अच्छा हुआ। तो अभी कई दवा वही थोड़ा सा पानी का बड़ा तकलीफ होते है यहाँ।
0: देखिए भाई पानी कर तो समस्या सभी कति दिखे पर मिलता है, बाकी उम्मीद करते हैं कि पानी बढ़िया गिरे और हमारे किसान भी अपनी फसल अच्छा हो। राउर कहाँ धान लगाए?
1: तो देखा धान तो अभी जैसे पानीर होगी और जो एक प्रिय गोल्ड जो है और एक एग्रीवीर।
0: तो ये सब कर जानकारी राउर कहाँ ले भेटे इसकी भाई उन्नत किस्म कर धान लगाना है?
1: हाँ तो देखा ये तो किधर जैसे दुकान में गए तो दुकान से भी पूछन की भाई ये कौन कौन सा धान आगे से।
0: कृषि विस्तार अधिकारी मन घलो
1: अधिकारी मन भी रहिन, कृषि अधिकारी मन कोमन से सलाह लेन तो उन्होंने बतायन की ये धान के ऐसे लगाए से ऐसा हुए ऐसा हुए रोग भी कम हुए तुमने के माध्यम पे हमन ले हन।
0: तो अभी धान फसल कर ही गोइट बात करे, अभी धान फसल में कोई रोग राय देखे पर भेटाव?
1: तो धान फसल में देखा अभी तो रोग जैसे झुलसा रोग हो गई रही अभी वही है। तो भाई जो आयरन कृषि वाला मन तो मन से पूछे की भाई झुलसा रोग होगी तो उनके लिए का दवाई मारल जाए तो मन हमन के बताई कि दवाई के बारे में कि ये सब दवाई मारे से ठीक होल कह के बताई ना हमन।
0: तो उकर से बदलाव दिखे पर मिलता है?
1: बदलाव तो हो ही सके है, अभी जहाँ तक हरा भरा भी है जो झुलसा का शिकायत रही तो सही होगी इसे।
0: तो खाद में का रहा और देता?
1: तो खाद में जैसे कही डीएपी होगी।

0: यूरिया हो गई और यही सब तो पोटास हो गई यही सब के देथन की है।
1: तो कतेक दिन का अंतर में देना पड़े?
0: तो करीब देखा जैसे रोपा रोपने के बाद जैसे 12 दिन 15 दिन यही आसपास के बीच में दे। हाँ, और जैसे तो खेती ला तैयार कर ले तो पहला तो खेत का बोलते हैं पोटास होगी, यूरिया होगी, DAP होगी, पाटा मार मुरु के वहीला फिर दे दुआ के फिर लगाना जारी कर देथन।
1: तो अभी ये साल धान कर फसल का लगता है कि बढ़िया हो ही की पानी हर तो कहीं नुकसान नहीं करी?
0: हाँ, देखा तो देखा जाए ना तो इसे तो नुकसानी तो है कि तो पानी की मात्रा कम है।
1: कम है
0: हाँ, लेकिन कही दो जैसे भाई अब ऊपर वाला का भरोसा है तो फसल तो अभी तक ठीक ही दिखत है, लेकिन अब देखा ऊपर वाला कैसे करा। अगर पानी बरसा सही करी तो धान तो सही आ जाए।
1: अगर पानी का ही समय ऊपर मिल जाता है तो देखिए फसल तो अच्छा हुई ऐसा माना था। और गन्ना लगाए हन?
0: हाँ, गन्ना लगाए हन की।
1: तो गन्ना के बारे में घलू बताते हैं अभी क्या स्थिति में है?
0: तो देखा गन्ना तो जैसे अभी जैसे मतलब पानी भी कम मात्रा में भी आते तो गन्ना कर जहाँ तक पौधा वगैरह सही ही है। हाँ, बढ़िया ही है क्योंकि पानी अभी का है वजह से गन्ना भी कोई परेशानी नहीं है।
1: तो इला कब लगाए रहे?
0: तो इला कही दो जैसे हम लगाए रहे फरवरी मार्च में।
1: खेत की तैयारी किसे कर रहे?
0: खेत की तैयारी जो होगी रोटावेटर होगी, उसके बाद जैसे दो फाल होगी उसमें जैसे गच्चा कटवाए रहे, ओकर बाद में कई दवा जैसे वाला तैयारी करें, ओकर बाद में क्या बोलते खाद पानी करके फिर वाला लगाए लगेन गन्ना ला। हाँ,
1: खाद पानी की बात करें तो खाद में राउर का दे रहे?
0: तो देखा जैसे गन्ना में खाद तो दे रहे जैसे DAP होगी, सुपर होगी और यूरिया होगी, तो जो दीमक जो लगे ना भी दवाई लगाए रहे।
1: अच्छा, देखिये दीमक एक बहुत बड़ा ही हमारे माटी का दुश्मन है और देखता की पूरा फसल नुकसान।
0: हाँ, वो देखा जैसे का जो नोक जो रहे ना जैसे गन्ना का जो नोक जो हिंकले रहे अधिकतर तो ही खाए कर कोशिश में रहे तो बचाव के लिए हमन इला करे।
1: तो इला राउर कौन जगह ले भाई प्रशिक्षण लेहन की?
0: हाँ, देखा यू तो कही जो कृषि अधिकारी मन जो है वह मन से हमन पूछताछ करें कि भाई देखा हमन किसान जो हन तो कही दो दिमाग और जैसे नोक लग खा तो कर लिए बचाव के लिए का करना चाहिए। तो मन भाई हमन के सलाह देना वही आधार पर हमन जैसे खेती ला करे।
1: तो का लागत है कि साल बढ़िया राउर कर गन्ना होगी?
0: हाँ, गन्ना तो देखा भाई बारिश भी कम के वजह से भी अभी गन्ना का पौधा वगैरह तो सही ही दिखत है, जहाँ तक लाभ तो देही कर लगत है।
1: उम्मीद करता हूँ कि फसल बढ़िया हो राउर कर। बाकी ये बताई बाजार व्यवस्था कर जैसे जब तैयार हो जाए तो गन्ना फसल थोड़ा कहाँ बेचे पर?
0: तो देखा गन्ना जैसे तैयार होगी से तो तुम्हार गन्ना कह दो जैसे जाके जनवरी फरवरी में तो कटेल तो ओला जैसे कह दो फैक्ट्री में भेज देते हैं जैसे करता हो।
1: यहाँ तो शक्कर कारखाना खुली जाए?
0: हाँ, खुली से तो वही अंबिकेपुर में जो साइड में है कह दो गन्ना करो फैक्ट्री जो करता में है वही में भेज।
1: वहाँ कहीं समस्या नहीं जाए बेचे?
0: तो देखा समस्या तो नहीं जाए जाए पर
1: बस जगह मतलब ट्रैक्टर में भर के ले जाते?
0: नहीं, वहाँ से जैसे ट्रक भेजल टोकन वगैरह मिलेल
1: पहले टोकन कटाना
0: पहले टोकन ओकर बाद में कह दो टोकन जैसे आई ना ओकर माध्यम पे फिर हमन लेबर के माध्यम पे करना स्टार्ट कर दे।
1: टोकन कटाए के बाद वहाँ ले खुद गाड़ी कंपनी भेजे?
0: हाँ,
1: एक बात फिर यहाँ आए के बाद फिर तुमन लेबर लगा के
0: भर के भेज देते
1: जाए के बाद पैसा रुपया मन तुरते मिले नगदी फसल के?
0: पैसा रुपया तो भाई अब सही रूप से ही मिलत है।
1: नहीं, मोर के मतलब ये है कि भाई हाथों हाथ देते हैं कि चेक में कैच कैल तो जमाना भाई ये मोबाइल कर नहीं
0: वो चेक कह दो जैसे वो खाते में हमारे भेज देते हैं पैसा वहाँ
1: ऑनलाइन मतलब ट्रांसफर
0: के माध्यम पे। हाँ,
1: सुखर बात है नहीं कि अभी जमाना भाई ऑनलाइन करा है।
0: अभी देखा जमाना जो है ना कि किसान ला जैसे कह दो ऑनलाइन के माध्यम पे किसान ला कोई परेशानी नहीं होते।
1: तो ये बताइए नंदलाल भैया कि अभी समय में अगर बात करी तो हमारे आए वाला समय में रबी फसल है ओकर का सोचे का तैयारी करे का है और कैसे फसल उत्पादन कर?
0: अभी देखा तो जैसे अब से अब सितंबर चला थे नहीं ये सितंबर जैसे अक्टूबर आ तो भाई रबी फसल में जैसे हमन सोचे हुई अब जैसे मटर होगी साओ भाई गेहूं होगी आओ सरसों होगी यही सब जैसे मौसम रबी फसल के बारे में हमन हिला सोचे हुए
1: की अभी आए वाला समय में आलू है मटर है गोभी है नहीं मतलब लगाए तैयारी।
0: अभी देखा जैसे बारी वगैरह में है तो जैसे गोभी वगैरह का थरहा तो मार दे हुई अब जैसे कह दो अब 10 या 15 दिन के बीच में मतलब वो भी तैयार होगी सब लगाना हम जारी कर देवो।
1: बहुत अच्छा बात है भाई। तो हमारे जाति जवाति में कहूँ कि भाई देखिए बड़ा सुगर है राउर गोड बात करें धान कर बारे में घलुक बताएं गन्ना के बारे में घलुक और आए वाला जो रबी फसल है ओकरो बारे में कि कैसे योजना बनाए खेती करिए और लाभ कमाई। जाति जवाति में कहूँ हमारे किसान भैया बहनी मन ला कुछ संदेश रूप में बताते हैं कि कैसे खेती पाती करके आगू बढ़े।
0: देखा तो भाई हर खेती बाड़ी तो कही दे भाई जितना मेहनत के ऊपर है ये जितने मेहनत करब उतने हमको लाभ दे और मेहनत के पीछे जो भाई हम तो हटब नहीं किसान भाई खून पसीना एक करम तबे तो हमको लाभ मिली नहीं तो सबे जन किसान भाई मल्ला में ही कहता हूँ कि मेहनत की और मतलब ध्यान दे और बढ़िया लेकर लाभ मिले मल्ला।
1: देखिए बहुत अच्छा राउर कर संदेश कि परिश्रम ही सफलता कर कुंजी हवे। तो राउर मेहनत करत हन और बढ़िया लेकिन फायदा ला कमात हन और हमन उम्मीद करत हन कि भाई ये राउर जो फसल लगाए हैं वह बढ़िया होए उत्पादन अच्छा होए और अच्छा लेकिन राउर कमाई। राउर हमारे संग आज गोट बात करें राउर के बहुत बहुत जय जोहार।
0: जय छत्तीसगढ़।

किसान भैया बहनी हो, देखिए दे भाई हमरे आज कर किसान में अभी सुनत रहन ग्राम असकला कर किसान नंदलाल महंत जी से भजन भैया कर गोट बात। और ये देखी बढ़िया खेती पाती करके लाभ कमाता है। बाकी देखी भाई एक बात है कि एके जन मेहनत करे ले चटिक देखी भाई आमदनी हर कम होल। आउ अगर हमरे जुट जाई नहीं तो भाई ओकस में देखिए दे चटिक फायदा हर बगरा हो जाल। ऐसे भाई दे योजना मन भी कहत हैं काबर कि किसान मन बर एगो सुघर कन योजना है जेकर नाम है किसान उत्पादक संगठन जिला हमरे FPO कर नाम ले भी जानती। यह ऐसे है कि संगठित किसान मन कर पहल से आर्थिक समृद्धि कर तरफ हमरे जाय सकत ही। काबर की देखिए हमरे जानती भाई एक जन मेहनत करना, एक जन उगाना, एक जन काटना, एक जन देखिए आने काम ला करना, ओकर बाद बढ़िया उचित भाई भाव भी भेटाना। ये सब जाथर नहीं हो सके तब जब ये बीज मन महंगा हो जाता है, उर्वरक हर उसने हो जाता है और हमर जग कृषि यंत्र कर भी व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे में तो ऐसे समय में अगर हमरे देखिए एगो संगठन बनाए ले थी और संगठन कर माध्यम से खेती पाती करत ही तो देखिए हमर जो सामूहिक शक्ति है तेहर भाई कई गुना बढ़ जाए। और ऐसे सोच के साकार करे बर सरकार कर माध्यम से बहुत सुघर योजना जिला हमरे FPO कही तो भाई ये दे भाई आने आने नाम से हमरे ये जानती किसान उत्पादक संगठन योजना घलो ये कथी भाई। एकर सबले बड़ा फायदा यह है कि किसान अपन उपज ला मिल के बड़े स्तर पर बाजार तक पहुँचाते हैं। और एकर से देखी जो बीच में जो हमरे बिचौलिया कथी नहीं तेमन जो लाभ कमाते नहीं तेकर से हमरे बाँच सकती, ओमन ऊपर जो हमरे निर्भर हो जाती तेकर से भी बाँच सकती और हमन ला ओ लाभ हर सोच सोच भेटा सकेल। तो एकर से हमन भाई बढ़िया लाभ कमाए सकती तो जरूर हमन ला कहीं ना कहीं ये तरफ सोचना चाहिए। और वो आए देखिए दे किसान उत्पादक संगठन योजना और जरूर हमन ला एक दूसर से मिल के और खेती पाती करना चाहिए। ऐसे में देखिए दे भाई हमर जो कोई मशीन भी है देखिए दे ट्रैक्टर कर रूप में चाहे आने रूप में हमन ओला अदली बदली करके भी उपयोग कर सकत ही और खेती में लाभ कमाए सकत ही। तो एकस देखी कई गो फायदा है और सरकार का आने आने खेती पाती ले जुड़ल योजना है जेकर गोट बात हमरे हमेशा करत रही और ओकर लाभ हमन लेकर कोशिश भी करती लेकिन चटिक जानकारी कर अभाव में हमर फायदा हर कम होत है। तो ये बढ़िया बात नहीं है। एकस में हमन ला जरूर भाई जानकारी मन ला जुटाना है और नगद खेती पाती में भीड़ के अब अपन आमदनी ना बढ़ाना है। और देखिए भाई आमदनी ला तो बढ़ाना है बाकी ये देख खेती पाती कर काम करके अगर हमरे घरे इतना समय आता ही नहीं और सियानी हर बढ़िया है दे भाई रांध के और देहत है नहीं तो मन हर करेल कि दे खाना खाए कर संग संग ये देश भाई सुघर सुघर ये दे गीत भी सुनी नहीं तो बिदासी हर कम हो जाए। तो वही सोच के देखी सुघर कन भोजपुरी गीत लाने हूँ अषाढ़ करे महीना में। अवेला गायन है हीरा चंद पटेल और उनकर संतामन तो लगी मिलजुल के सुना थी।

हाँ देखी भाई, हीराचंद पटेल और उनकर संगता मनकर गायल ये सुघरकन भोजपुरी लोकगीत। ओकर बाद देखी बेरा किसान भैया बहनी होएगी से मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर। तो देखी मंडी भाव कर अगर गोट करी तो हमार अंबिकापुर बाजारे कोदो रही 3,250 रुपया प्रति क्विंटल, तिल रही 6,000 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ 2,428 रुपया प्रति क्विंटल और सरसों 4,350 रुपया प्रति क्विंटल। उसने अगर मौसम कर गोट बात करी तो देखी आज कर जो अधिकतम तापमान रही 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रही और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रही। उसने देखी काल कर अनुमान आए अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस कर और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहे कर। बाकी संग संग देखी ये दे अनुमान आए कि दिन भर बादल ये दे रही भाई, बदरी छाए रही और बीच बीच में देखी कमो बेस बरखा पानी होए कर संभावना है और संग संग देखिए दे भाई हवा कर चले कर भी चानस भी बताता है। तो ऐसे में हमनला चटिक सतर्क रह के और अपन हिसाब से तैयारी करके खेती पाती में भिड़ना है, काबर की शरीर हर बढ़िया रही तो खेती पाती हमरे बढ़िया कर सकब। तो

जरूर खेती पाती कर संग संग अपन ध्यान भी रखना है हमन ला, और मौसम कर हिसाब से अपन ध्यान रखना है, और खेती पाती कर काम कर संग संग अपन जरूर सेहत ला भाई बढ़िया हमन ला रखना है। और देखिए भाई ओकर बाद छोटे छोटे बात मन कर तिहा जतन करना है, और छोटे छोटे बात यह है कि बरखा पानी अगर होता है तो भाई जरूर अपन आपला बचाना है, और खेती पाती कर कामला संग संग उसराना है। बाकी बेरा होगी सहाय आज कर चौपाल ला यही जग समेटे कर, तो आने दिन फिर भेंट हो ही। राम राम।

0: ग्रामीण श्रोताओं के लिए भी चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडिया वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंस्टा फरमाइश लेकर। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना और इसे सुनने की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगोशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजय, ज्ञानेश्वर, प्रकाश दाड़ंगे और देवेंद्र भटकर। विराटनगर नेपाल से अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके साथी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, है अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रही मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। रायगढ़ से कौशल गोस्वामी, बेबी जोई, रिंकी तिवारी, नरेंद्र तिवारी और महेंद्र कुमार तिवारी। उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। चनोरा फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता, श्याम रवि, आर्यन रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और उनके साथी। अमागासी लखनपुर सरगुजा से मुनेश, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और उनके परिवार के सभी सदस्य। और दुर्ग से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जो है फिल्म मंचली से। आवाज़ है किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा,

अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम चिराग। सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। दतरेंगी भाटा परस से हीरा मणि वर्मा, परस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, डुमरिया भटगांव सूरजपुर से फुलेश्वरी धर्मजीत, सुरेंद्र कुमार, आरती यादव, नितिन यादव, हिमाक्षी, महेंद्र कुमार, मोहर मनिया और उनके परिवार के सभी सदस्य, नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, लपटरा सरगुजा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घनू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी और उनके परिवार के सभी सदस्य, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, डोंडी लोहारा, बालोद से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम, सारसताल सोनगरा सूरजपुर से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा और उनके साथी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, और मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अनजाना और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। कालापारा सरगुजा से रामचंद्र

गुप्ता, पांडे, राम राजवाड़े और आपके बहुत सारे साथी। उदयपुर सरगुजा ग्राम पंचायत खोंदला से जीवधन सिंह पैकरा, घुड़नी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नभीसा प्रवीण। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। और ये श्रोता हमारे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। और ये श्रोता हमारे हैं ग्राम चरोदा नवापारा बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रेमला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनजाना से।

श्रोताओं, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे सुनने की फरमाइश की आप सबने लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार। ये श्रोता हमारे वाराणसी से हैं, अरुण कुमार मालवी, सरिता मालवी और उनके साथी, और इसी गीत को सुनना चाहा है आप सबने। सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, सोनी और आरोही। सुकनाहा नेपाल से अरुण शर्मा, रेणु, राहुल, वंदना, प्रियंका और उनके साथी। चखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और उनके परिवार के सभी सदस्य। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। सांगली से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह, सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। और ये श्रोता हमारे हैं हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना और कुश खन्ना। और धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक मोनू उन्नति, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मंजिल का ये गीत।

सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। भाटापारा से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, बेबी वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता पायल और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। सहारनपुर से राधा नामदेव, अर्पणा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। पद्मा टाकिच नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। और कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। और पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका और विशाखा सोनवनी। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म पहली का गीत। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का है।

मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, लाव्या, आरव और एस के पप्पी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। भिलाई से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज और उनके परिवार के सभी सदस्य। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है धर्मवीर।

0: आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है दीवार और इस गीत को सुनने की ख्वाहिश की है आप सबने। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना और उनके साथी बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार राहुल रणजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल रुद्री धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम सावित्री और शिखा शेफाली चकरभाटा कैंप से डी आर नारवानी रवि चांदनी खुशी नारवानी खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनमर मास्टर लुबना और आलिया अंसारी झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीता भाटिया रजत भाटिया और मयंक भाटिया हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर सदानंद मंदुरकर कुमार गौरव मंदुरकर बैलाडीला से शिव प्रसाद देवदास मोहित देवदास ओमिन उत्तरा प्रमिला यमुना जमुना अंजू मंजू और उनके साथी हरियाणा से विनय मोहन खार वन मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी सतीश मिगलानी अनमोल मिगलानी महावीर संधु ग्राम ममना हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जौनपुर से इरशाद अंसारी कामरान इरशाद अरमान इरशाद नवेद अजरा तबस्सुम रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी नौरीन अंसारी आफिया परवीन नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता थांदी डॉक्टर प्रियंका थांदी प्रशांत प्रियम वामिका और वाणी थांदी प्रेमनगर सत्यम क्लब से अरविंद कुमार यादव रुस्तम हिमांशु अनुष्का ऐश्वर्या प्रीतम मनोज और मिथिलेश यादव जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा रोजी बी डिकोस्टा पर्ल और विलिस डिकोस्टा पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी डोंगर गांव से राजपाल गजबी राधिका गजबी अनिष्का और तन्मय गजबी धनोरी तेलीवाला से नसार सलमानी नौशाद सलमानी आलिया और आयान एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोत निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म दीवार का ये गीत।
1: तू तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनना चाहे आप सबने माऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा यहीं से मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा पीहू और उनके साथी भी परलोट सरगांव से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर निर्मला नवारकर विशाल नवारकर महाराष्ट्र मलकापुर से नारायण इंगले सोपान तायडे और आशीष लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पूनम राम और कृष्णा देवांगन दरियापुर बाबली से गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और अशोक येले रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर वीरक जयतेग वीरक और मीका वीरक बीड शहर महाराष्ट्र से पोपट राव कुलथे हनुमंत कुलथे प्रथमेश कुलथे तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन फातमा सोगरा चडोगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू अजय साहू जयकिशन साहू कुमारी साहू इंद्राणी माया साहू अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा सुचा सिंह पाठक मजनू कटीला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर उमंग आकांक्षा मलिक और माही मलिक सोमनी राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू कुलवंती देवी साहू देवेंद्र प्रताप साहू नेहा मिलिंद प्रणय रुद्रांश और प्रताप साहू हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान और इरफान खान रायगढ़ से सौरभ निषाद प्रकाश बल्लू निषाद तरुण श्रीनिका और शीजा बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिंपल देवांगन महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव इंद्रपाल यादव राघवेंद्र अरविंद रागनी रिया रेनू देवांशी और आराधना रोनिका यादव हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा बोड़खे हनुमान बोड़खे उत्तम जमदाड़े मुंगीसापुर से हमारे श्रोता मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन्निशा शबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी और तुल्हापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार नरगिस खातून पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म आराधना से आवाज़ किशोर कुमार की

0: और कब तक।
1: आनंद बख्शी के लिखे और एस डी बर्मन के संगीतबद्ध किए फिल्म आराधना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आज यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
4: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती

0: जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
4: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
5: राज्य सहित

0: झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ. जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ. गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार, वर्षा भोसले और शिवांगी कोल्हापुरे की आवाज में। फिल्म का नाम है लूटमार। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत राजेश रोशन का है।

आखिर में आइए सुनते हैं इंदिवर का लिखा गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। आवाज़ है कंचन और मुकेश की और फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

कंचन और मुकेश के गाए फिल्म धर्मात्मा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 बस होने ही वाले हैं और हम लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम ईमेल की गूंज। आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और पहला ईमेल किसका आया है हम आपको बताते हैं। ये श्रोता हमारे हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कंचन कुसुम कलावती सोनी, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, नेपाल

अगर मध्य प्रदेश से हमें ईमेल भेजा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह ने। भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। कच्छ भुज से जगदीश और उनके साथी। राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। राजापुर सूरजपुर से माणिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े। कुम्हारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और इब्राहिम। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। हरिनगर दुर्ग से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और हर्ष आहूजा। खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर। खंडवा से ही शेख सईद राही और मुन्ना भाई। बिहारी कॉलोनी डुमराव से मेराज अहमद बेलदार, वसीम अकरम बेलदार, अल्ताब आसमा, मल्लू कालिया और उनके साथी। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई का ईमेल भी हमें मिला है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। नादुरा बुलढाणा महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, धनोरा से विटाली और उनके साथी। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे और पुष्पा नारे का ईमेल हमें मिला है। और आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जो है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी।

कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है देवता और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, मनकी लोरमी से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे, पाहरा अहिवारा दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण बंछोर, प्रीति और छाया बंछोर, मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी, मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा और हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और उनके साथियों का ईमेल हमें मिला है। और ये श्रोता हमारे हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णवानंद, सत्यम आनंद, पश्चिम बंगाल बोहड़ागाछी से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, खोंदला उदयपुर सरगुजा से हमें ईमेल भेजा है जीवधन सिंह पैकरा, घुड़नी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा ने, और हनोई वियतनाम से प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, राजकुमारी स्वर्णता, युगेन, चिरंजीव और आदेश कुमार। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म देवता से।

श्रोताओं, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम है लोफर, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और मैंडी शर्मा। शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम और नसरीन परवीन। नई दिल्ली से गौरव मानसी, अनिल, कविता अरोरा और उनके साथी। जमानिया गाजीपुर से हमें ईमेल भेजा है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने, और गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल का ईमेल भी हमें प्राप्त हुआ है। सारसताल सोनगरा से हमारे श्रोता हैं प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैकरा। डोंगरगांव से राजपाल गजबी है, राधिका गजबी है, अनिष्का और तन्मय गजबी है का भी ईमेल हमें मिला है। अनारकली बाजार जगराव से हमारे श्रोता हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम लोफर।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और विशाल सपकाल, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ, कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का ईमेल भी हमें मिला है। ज़िला नादेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकर जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल का ईमेल भी मिला है। गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर यागेश, योगेश कुमार, दीपक, पूजा खटक का ईमेल भी हमें मिला है। और ये श्रोता हमारे हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डी के साहू। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री। एटा से हमें ईमेल भेजा है नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, रसीद नवेद हसन और यशफ अब्बासी। खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईचान, राजकुमार बुड़ाना, खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का ईमेल भी हमें मिला है। ये श्रोता हमारे हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल निशा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम हमजोली।

रायगढ़ से हमें ईमेल भेजा है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश राजेश्वरी और आशिक चौहान ने। अकोला से के शरद पाजपुर, शोभा पाजपुर, वैदेही विहान और उनके परिवार के सदस्यों का ईमेल भी हमें मिला है। पोटिया कला दुर्ग से हमारे श्रोता संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। जालंधर से हमें ईमेल भेजा है अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर, धर्मजीत और फातिमा कौर ने। कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री और अन्विका तनुश्री। झुमरी तलैया से हमें ईमेल भेजा है अभय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका, गुड्डू, मुन्नी, जयप्रकाश, वसंतलाल, रिया, जिया, टूसी, आयुषी और अनिरुद्ध ने। लोगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह और शुभदीप का ईमेल भी हमें मिला है। और ये श्रोता हमारे भिलाई से हैं अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और मनहर उदास का गाया फिल्म होटल का ये गीत।

आशा भोसले और मन हरिदास के गाए फिल्म होटल के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल की गूंज आज यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामणि। आज इस कार्यक्रम में

अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग किरवानी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामनी अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शैलेंद्र का लिखा गीत शंकर।

जयकिशन के संगीत निर्देशन में, आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। इस गीत को सुनना चाहा है आप सब ने। बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपानी, संगीता नेपानी, आकाश नेपानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राकेश श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और उनके परिवार के सभी लोग, बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन, डोंगरगांव से राजपाल गजबी है, तन्मय अनिष्का, राधिका गजबी है और यवतमाल से संतोष खड़से और विनोद खड़से। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम है दोस्ती। इसे सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तानिया करमरकर, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आशा खान, हदीहा खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, राव भाई और शाहिद भाई, अकुला से ही रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

गीतकार राजा मेहदी अली खां, संगीतकार ओ पी नैयर, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम एक मुसाफिर एक हसीना, और सुनने के ख्वाहिशमंद आप सब। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे। और मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नितिन वैद। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। गीत लिखा है नीरज ने और संगीत इकबाल कुरैशी का है और फिल्म का नाम है चा चा चा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा। देवपोर्ट वाशिम से राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राशि भावसार, राजू भावसार और प्रीति खंबायतकर। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। पाहरा अहिवारा दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर। और उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहाड़कर, सरिता गवाहाड़कर, प्रिंस एकांश गवाहाड़कर। नागपुर से वैशाली शैलेश गवाहाड़कर, सुमित गवाहाड़कर, ध्वनि गवाहाड़कर। बदला पुर मुंबई से सिद्धांत गवाहाड़कर और प्रणीता गवाहाड़कर। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म चा चा चा का गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। संतोषी नगर रायपुर से चंदूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, नामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। जांभरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष, पृथ्वीराज साध्वी और परभणी जोशी। ये श्रोता हमारे हैं बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। बंगला मटिया बालो से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रैंबिका, लीना, अंशु और आशुतोष अंगारे। दतरेंगी से भागवत परमा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू। और आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत चित्रगुप्त का है।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म काली टोपी लाल रुमाल के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचार अगले कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और

0: और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation